एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 43 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए कैलाश अनुज और पीयूषा अनुज के स्वर में ये भक्ति वंदना।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए ये भक्ति गीत, स्वर DV पलुस्कर का है।

0: इसी भक्ति गीत के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: मानव की अविकसित व पाशविक प्रवृत्ति हिंसा की होती है। उसके प्रति हिंसा होने पर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा होती है। बच्चे को ही लीजिए, उसे एक बच्चा मारे तो वह तुरंत उसका जवाब मारकर ही देगा। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा हो तो हिंसा का अंत ही नहीं होगा। हिंसा में क्रूरता व दुष्टता होती है, उसमें द्वेष व घृणा होती है। हिंसक व्यवहार का मतलब ही वह व्यवहार जिसमें मानव के उत्कृष्ट गुणों यानी उदारता, सहनशीलता, शालीनता, मानवता आदि का अभाव हो। महर्षि वाल्मीकि जब हिंसक प्रवृत्तियों में लिप्त थे तो उन्होंने हत्याओं का अंबार सा लगा दिया था, परंतु जब वह सैलाब थमा और उनके हृदय में शांति, उदारता, मानवता जागी तो वे महात्मा बन गए। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में इतनी हत्याएं होते हुए देखी, विनाश का इतना विकराल रूप देखा कि उनका हृदय दुख से द्रवित हो गया और वे उदारता, सहनशीलता व सद्भाव जो मानव जाति को गरिमा प्रदान करते हैं से अभिभूत हो गए। स्पष्ट है कि मनुष्य की नियति हिंसा नहीं है। अहिंसा का ये अर्थ कदापि नहीं है कि अन्याय का प्रतिकार न किया जाए। ये तो अन्याय को सहना होगा व कायरता होगी। गांधी जी ने कहा था कि यदि हिंसा या कायरता के बीच ही चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को ही चुनूंगा। अपनी बेइज्जती का मुखदर्शक बनकर कायर बने रहने से सशस्त्र प्रतिकार करना उचित।

0: होगा। अपनी संपत्ति, मान और धर्म यदि दांव पर लगा है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। यदि इनकी रक्षा व्यक्ति अहिंसात्मक बहादुरी से करने में असमर्थ है तो उसे आत्मरक्षा किसी भी प्रकार करने की छूट है। यदि हिंसा द्वारा इन सब की रक्षा सक्षम तरीके से कर सकते हैं तो यह और उत्तम होगा। ऐसे उदाहरण हैं जहां अत्याचारियों को आत्मसम्मान की रक्षा करने वालों से प्रभावित किया है। राजा पोरस ने महान सिकंदर को यही जवाब दिया था कि उससे ऐसा ही व्यवहार किया जाए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। अहिंसा द्वारा जो अन्याय का प्रतिकार करते हैं वे संघर्ष का भी मानवीकरण करते हुए मानव जाति को गरिमा प्रदान करते हैं। हथियार तो वे ही रखते हैं जिनके दिल में भय होता है, लेकिन अहिंसा के लिए तो विशुद्ध निर्मयता जरूरी है। अहिंसक संग्राम में द्वेष व घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। अहिंसा तो क्षमा की पराकाष्ठा है और क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिवान है। अहिंसा का रास्ता वीरता की दृष्टि से भी आगे का रास्ता है, वह इसमें उदारता व शालीनता भी है। अहिंसा अदृश्य व सूक्ष्म रूप से भी प्रभाव डालती है, इससे सीधा रास्ता अन्य नहीं है। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंत अहिंसा के द्वारा ही किया था और भारत को स्वतंत्र कराया था। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा को जीवन में प्रथम प्रधानता दी। भगवान श्री महावीर ने भी अहिंसा के पथ पर चलने के लिए विशेष रूप से कहा है। आज जब पूरे विश्व भर में हिंसा व्यापक रूप से फैली है, वर्तमान समय में इस समस्या का निराकरण अहिंसा के पथ पर ही चलकर दूर किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख मुकेश दुबे का था, वाचक स्वर आशीष दुबे का। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर सुरेश वाटकर का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। आज की कृषि चर्चा में हम बात करांगा हरी खाद की फसल की बुआई कर मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार करनु चाहिए। वाचक स्वर ओम प्रकाश चौरे को। कृषि में हरी खाद उना सहायक फसल कहेज जैकि खेती मुख्य रूप से भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाना और जैविक पदार्थ की पूर्ति करने का लेना करी जाए। इन्हा तरह की फसल का फूल आना से पहला कल्टीवेटर चले कर मिट्टी में मिले दिया जाए। हरी खाद का उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीव की संख्या और क्रियाशीलता बढ़ी जाए। हरी खाद की लेना दलहनी फसल सनई ढेंचा लोबिया मूंग उड़द ज्वार छे फसल न को उपयोग करनी चाहिए। इनकी वृद्धि शीघ्र कम समय में होए। इन फसलों की पत्ती बड़ी वजनदार और बहुत संख्या में रहे। इन फसल की जल मांग और खाद की आवश्यकता कम हो जिकासी लागत कम लगज और अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो। दलहनी फसल का जड़ में नाइट्रोजन ख वातावरण सी मिट्टी में स्थिर करने वाला जीवाणु राइजोबियम पाए जाए। सनई ढेचा फसल की बुआई के लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मूंग उड़द की बुआई के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होने पर ही मई का अंतिम सप्ताह में हरी खाद की बुआई करनी चाहिए या मानसून आना पर खेत में हरी खाद फसल की बुआई करनी चाहिए। बुआई का 30 से 35 दिन फूल आने से पहला खेत में पाटा चलाकर या कल्टीवेटर लगाए कर हरी खाद की फसल खेत में मिले देवा। खेत में मिलाते समय खेत की हरी खाद की फसल 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर पलटा। समय से पहले पलटना से पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है और देर से पलटना से रेशा होना से फसल का सड़ना गलना में अधिक समय लगा। अधिक वर्षा या अधिक तापक्रम की दशा में सड़ना गलने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो जाए। धान की खेती करने वाला क्षेत्र में सनई ढेचा की फसल का उगाई कर खेत का पलट कर और मचाई कर धान की रोपाई आसानी से करी जा सकज। हरी खाद की दलहनी फसल से 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और गैर दलहनी फसल में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बुआई के समय दर से डालने से अधिक लाभ हो। हरी खाद का उपयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हो। 81 मिट्टी संरचना में सुधार, वायु संचार और

0: धारण क्षमता में भी वृद्धि हो। भौतिक रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होना सी खेती में लागत में कमी आवाज ही था आज की कृषि चर्चा। राम राम किसान भाई बहनों ने, राम राम। आज की कृषि चर्चा में हम बात करांगा हरी खाद की फसल की बुआई कर मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार करनु चाहिए। वाचक स्वर ओम प्रकाश चौरे को। कृषि में हरी खाद उना सहायक फसल कहेज जैकी खेती मुख्य रूप से भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाना और जैविक पदार्थ की पूर्ति करने का लेना करी जाए। इन्हा तरह की फसल का फूल आना सी पहला कल्टीवेटर चले कर मिट्टी में मिले दिया जाए। हरी खाद का उपयोग सी मिट्टी में सूक्ष्म जीव की संख्या और क्रियाशीलता बढ़ी जाए। हरी खाद की लेना दलहनी फसल सनई ढेंचा लोबिया मूंग उड़द ज्वार छे फसल न को उपयोग करनी चाहिए। इनकी वृद्धि शीघ्र कम समय में हो। इन फसलों की पत्ती बड़ी वजनदार और बहुत संख्या में रहज। इन फसल की जल मांग और खाद की आवश्यकता कम हो जिका सी लागत कम लगज और अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो। दलहनी फसल का जड़ में नाइट्रोजन ख वातावरण सी मिट्टी में स्थिर करने वाला जीवाणु राइजोबियम पाए जाए। सनई ढेचा फसल की बुआई के लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मूंग उड़द की बुआई के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होने पर ही मई का अंतिम सप्ताह में हरी खाद की बुआई करनी चाहिए या मानसून आना पर खेत में हरी खाद फसल की बुआई करनी चाहिए। ही था आज की कृषि चर्चा। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज का विषय था हरी खाद की बुआई से मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार। वाचक स्वर ओम प्रकाश चौरे का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुने भेंट वार्ता, विषय होगा साइबर सुरक्षा। जानकारी देंगे थाना प्रभारी पंधाना दिलीप देवड़ा। सुबह 7:20 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। सुबह 8:15 पर सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत। सुबह 8:30 पर होगा आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आज सुनिएगा वार्ता जैविक कृषि के लाभ। वार्ताकार होंगी केसर। सुबह 10:40 पर सुनिएगा सुगम संगीत।

शाम 5:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। शाम 6 बजे युववाणी कार्यक्रम, आज का क्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का, और शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

रात्रि 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर एनएसडी आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा। इसका विषय होगा आज का किसान सशक्तिकरण। इसे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:35, रात्रि 9:30 से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आज की ताज़ा खबर में प्रस्तुत है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं योग दिवस के अवसर पर पुरानी अनाज मंडी प्रांगण में भी सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं शहर में अन्य जगहों पर भी लोगों ने योग किया।

बीते दिन रविवार को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर सद्भावना मंच द्वारा मालिकुआ स्थित कार्यालय में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा शहर में गायक श्री किशोर कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर खंडवा से महाअभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंडियन आर्मी अग्निवीर की तीसरी चयन सूची में चयनित युवाओं का सम्मान किया गया।

शहर में रविवार को नीट री एग्जाम 6 केंद्रों पर हुई। परीक्षा केंद्रों पर सख्त व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित हुई। इसमें खंडवा के अलावा हरदा, बुरहानपुर सहित अन्य जिलों से आए 2228 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। निमाड़ अंचल के लघु कथाकार पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक को गोविंद शर्मा व विजय जोशी द्वारा संपादित किया गया है।

अब जानकारी खेल जगत से। महिला हॉकी में महिला नेशंस कप के फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीता।

एक नज़र मौसम के हाल पर। कल का अधिकतम तापमान रहा 39.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 23.0 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। समाचार संकलन विद्या मुकेश चौहान का।

0: आज की ताजा खबर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता। विषय है साइबर सुरक्षा। जानकारी दे रहे हैं थाना प्रभारी पंधाना दिलीप देवड़ा।
2: बहुत बहुत स्वागत आज के विशेष कार्यक्रम में देवड़ा जी। जी हम ये देखते हैं कि आजकल साइबर अपराध काफी बढ़ गए हैं। लिंक आती है और लोगों के खातों से पैसे कट जाते हैं। तो जो डिजिटल युग है, हम लोग अब यूज करते हैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध भी काफी बढ़ गए हैं। तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो साइबर सुरक्षा है वो आम नागरिक के लिए अब कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।
3: इस डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में लगभग हर व्यक्ति बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया और सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है।
2: जी
3: ऐसे में साइबर सुरक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। थोड़ी सी लापरवाही से बैंक खाते, व्यक्तिगत जानकारी और पहचान का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए।
2: जी साइबर अपराधियों से बचने का सबसे प्रभावी और सरल तरीका क्या है?
3: साइबर अपराधियों से बचने का सबसे और प्रभावी तरीका, अपने आप को सतर्क रखें, जागरूक रखें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा OTP, पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। केवल विश्वसनीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर तुरंत विश्वास न करें।
2: जी ये तो OTP पिन की बात हो गई, लिंक की हो गई। लेकिन आजकल ठगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि किसी को कॉल लगा रहे हैं,
3: जी
2: वीडियो कॉल लगा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं।
3: जी जी
2: और तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
3: डिजिटल अरेस्ट में आपको यदि थोड़ा नागरिक जागरूक है, समझदार है, तो वो डिजिटल अरेस्ट वाला जो फ्रॉड आजकल कर रहे हैं उसमें समझ सकता है, वो जान सकता है। अधिकतर ये लोग क्या है, बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि वो क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते हैं ज्यादा और उनको अवेयरनेस की कमी है, इसलिए उनको ज्यादा शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में यदि कुछ होता है तो अपने कम से कम पड़ोसी को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे संपर्क करके उसको ये जानकारी दे और तत्काल थाने में सूचना दे। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। पुलिस अपना खुद यदि कोई क्राइम किसी ने किया है तो उसके लिए उसको खुद थाने बुलाएगी या थाने से चल के जाएगी, वो बाकायदा वर्दी में होगा
2: जी,
3: है ना। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये चीजों के ऊपर ध्यान न दें और पुलिस से संपर्क में रहें। इस मामले में यदि आपके साथ कोई घटना हुई है तो पुलिस से संपर्क करें, यही कहना है।
2: अभी देखने में आ रहा था कि कुछ जैसे न्यूड कॉल भी लगाते थे, मतलब एक पूरी युवक है या युवती, और फिर उसको ब्लैकमेल करते थे व्यक्ति को,
3: फोटो वगैरह शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, आप हमें पैसा दीजिए नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। ये सब फ्रॉड है और इन चीजों में किसी को किसी के झांसे में नहीं आना है और ना ही किसी से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा थाने में जाएं और संबंधित नंबर या जो लिंक है उसकी

0: शिकायत करें, उस आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करके अपराधियों तक पहुंचेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं।
1: हम देखते हैं कि साइबर फ्रॉड हो गया है
0: हाँ जी,
1: तो उसके बाद में जो शुरुआती कुछ मिनट होते हैं वो काफी कीमती होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्या करना चाहिए शुरुआती मिनटों में?
0: यदि साइबर अपराध हो गया है किसी के साथ या ठगी हो गई है किसी के साथ, तो कुछ जो सेकंड्स रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रत्येक साइबर फ्रॉड के बाद शुरुआती कुछ मिनट पीड़ित को तुरंत, जैसे 1930 पे जो हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन, उस पर कॉल करना चाहिए और उनको जो जानकारी मांगते हैं उतनी जानकारी दे देना है उनको, ताकि वहां पे शिकायत दर्ज हो जाए। साथ ही बैंक को तुरंत सूचित करें, खाते या कार्ड को ब्लॉक करवाना चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम किया जा सकता है।
1: जी,
0: जी,
1: छोटी छोटी कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें साइबर ठगी का शिकार बना देती है?
0: सोशल मीडिया पर अधिक निजी जानकारी साझा करने से पहचान की चोरी, फर्जी
1: जी
0: प्रोफाइल बनाना और आर्थिक ठगी का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी
0: साइबर अपराधी इन जानकारियों का उपयोग ब्लैकमेल या धोखाधड़ी के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए केवल आवश्यक जानकारी ही साझा करें और अपनी प्राइवेसी सेटिंग सुरक्षित रखें।
1: जी
0: जी,
1: मतलब अपनी निजी जानकारियां जो है वो सोशल मीडिया पर
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: नहीं साझा करना
1: बिल
0: चाहिए ना। जैसे
1: जी
0: लोग घूमने जाते हैं तो बाहर की फोटो डाल देते हैं और बहुत सारी चीजें भी अपने मोबाइल में साझा करते हैं, तो उससे कुछ साइबर अपराधी जो है जानकारी जुटाकर फ्रॉड कर सकते हैं।
1: जी जी युवाओं और विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा को लेकर आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है?
0: युवाओं और विद्यार्थियों को मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए तथा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसको बोलते हैं, आवश्यक चालू रखना चाहिए। केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप से ही सामग्री डाउनलोड करें। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सावधानी रखें और अपनी निजी जानकारी किसी से भी साझा न करें। इंटरनेट का उपयोग समझदारी से, जिम्मेदारी से, सतर्कता के साथ करें। यही है जो नए लोगों के लिए सजेशन।
1: ये बताइए कि जो बढ़ती डिजिटल सुविधाएं हैं आजकल,
0: जी
1: हर
0: जी
1: हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हम
0: जी
1: बच रहे हैं बाहर जाने से, हम सोचते हैं घर ही बैठे हमारा काम हो जाए,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: इससे अपराध भी बढ़ गए हैं। डिजिटल सुविधाओं के साथ साइबर अपराध भी अधिक चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, डिजिटल सुविधाओं के बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं, अपनी ठगी का शिकार भी बना रहे हैं। इसलिए केवल तकनीक पर नहीं बल्कि जागरूकता और सतर्कता पर भी विशेष ध्यान देना है। सुरक्षित डिजिटल आदतें अपनाकर इन अपराधों से बचा जा सकता है आज के टाइम में।
1: जी, पुलिस और आम जनता मिलकर साइबर अपराधों पर कैसे प्रभावी रोक लगा सकते हैं?
0: पुलिस और आम नागरिक, साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आम जनता का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। लोगों को किसी भी साइबर ठगी की तुरंत शिकायत करनी चाहिए और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस को समय समय पर जागरूकता अभियान जो चलाते हैं उनको और अच्छे से चलाकर लोगों की मदद लेना चाहिए इन अभियानों में, और लोगों को साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से संबंधित प्रसार प्रसार जो करती है पुलिस, उसका और अच्छे से प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी उसका फायदा लेना चाहिए। इस आधार पे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इन पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
1: जी, ये तो हो गई, हम अपराध के बारे में बात करें तो साइबर से अगर हो गया था, ठगी हो जाती है तो
0: जी,
1: आम जनता कहाँ पर जाकर इसकी शिकायत करे?
0: जैसे किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है या कोई क्राइम हो गया है, तो वो तत्काल अपने बैंक को भी सूचित करे। 1930 जो उसका हेल्पलाइन नंबर है वो है, और लोकल थाने में, पास के थाने में फटाफट चले जाएं, बैंक में चले जाएं और अपना खाता, ATM और ये चीजें ब्लॉक करा दें। और फिर साइबर जो जिले में होता है, साइबर अपराध शाखा होती है जिले में, वहां पे जाके भी मिल सकता है। यदि शहर का नागरिक है तो तत्काल पहुंच सकता है साइबर शाखा में,
1: जी
0: और यदि ग्रामीण एरिया का है तो लोकल थाने में चले जाए और 1930 पे कंप्लेंट कर सकता है, जिससे
1: जी
0: वो बच सकता है, अपना ज्यादा बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है।
1: जी क्या जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार है?
0: बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि जो जागरूकता है उसी से अपराध आप होने से रोकेंगे।
1: जी, तो पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते होंगे?
0: जी, हम खुद जाते हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, वो खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर के समय समय पे अभियान चलवाते हैं। हम जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, जाते हैं अन्य सरकारी दफ्तरों में जाके इससे संबंधित जानकारियां देते हैं, लोगों
1: जी
0: को जागरूक करते हैं।
1: जी हमारे खंडवा जिले के हमारे क्षेत्रवासियों के लिए साइबर सुरक्षा के लिए

0: क्या महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहेंगे?
1: मेरा सभी वासियों से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल, संदेश या लिंक पर भरोसा न करें। ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत, जो मैंने पहले बताया कि 1930 पर कॉल करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते रहें। यही मेरा संदेश है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी देवड़ा जी आपने, अपना कीमती समय हमें देने के
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: श्रोताओं को जागरूक करने के लिए,
1: थैंक यू,
0: और कार्यक्रम
1: थैंक
0: में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: थैंक
0: जी।
1: यू।
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर सुरक्षा विषय पर भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे थाना प्रभारी पंधाना दिलीप देवड़ा, आपसे बात की थी दीपमाला शिंदे ने।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का जताया आभार। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 133 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम। आज 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्योपुर जिले स्थित कुनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। इसके बाद वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति के प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए माँ नर्मदा की सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की प्रतिकृति उपहार स्वरूप प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दुनाकिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा

0: क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के इछावर और भैरुंदा में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 67 ग्रामीण सड़कों के लिए 133 करोड़ रूपये से अधिक के स्वीकृति पत्र सरपंचों को प्रदान किए, जिनसे 36,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं भैरुंदा में श्री चौहान ने 28.53 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने इस दौरान मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि यह टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम होगा, जिससे परिचालन दक्षता और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने सीकर जिले के सुंदरपुरा में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की, जिससे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर के मुंडेर पर चहचहाती गौरैया अब शहरों से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन पन्ना जिले में एक शख्स ने इस नन्ही चिड़िया को फिर से बसाने की ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि सैकड़ों गौरैया अब फिर से चहचहाने लगे हैं। आज सुनिए कि कैसे एक इंसान की संवेदनशीलता ने पूरे गांव को गौरैया का सुरक्षित आशियाना बना दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
3: पन्ना के पटना तमोली गांव में ग्राम वन समिति अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा बरसों से गौरैया संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना और पानी की भी नियमित व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ केवल गौरैया ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य पक्षियों को भी मिल रहा है।
4: मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी छोटी सी मुहिम न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी को संवार सकती है। प्रकृति संरक्षण का कार्य बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि संवेदना से हो सकता है। आज सैकड़ों बच्चों ने उन पक्षी घरों में जन्म लेकर के चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा घर आंगन गुलजार हो रहा है।
3: इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव में दिखाई देने लगा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना वन मंडल अनुपम शर्मा का मानना है।
5: अजय चौरसिया जी जो कि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो गोल वाली एक लौकी होती है उससे गौरैया के घोंसले बनाने का उन्होंने प्रण लिया और कई प्रयास भी किए। हर घोंसलों में गौरैया आई और उन्होंने दो दो तीन तीन बच्चे भी दिए, तो आज की डेट में ये काफी एक सक्सेसफुल मुहिम के तौर पर पटना तमोली में है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
0: प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 10 दिनों में करीब 2,90,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के 14 अंचलों में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा

करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 26 जून तक हीटवेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। मानसून के नहीं आने और प्री मानसून गतिविधि कम होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर पिछले दो दिन से जबलपुर संभाग में लू के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आगरमालवा में दिव्यांग और वरिष्ठजनों के लिए आज से 25 जून तक जिले के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन शिविर आयोजित होंगे। नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल जिले के दो परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। वहीं धार जिले में भी 3 निर्धारित केन्द्रों पर नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को 3 जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्त

नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं धार जिले में भी तीन निर्धारित केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को तीन जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुना में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हनुमान टेकरी परिसर में किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल पूरा जिला योगामय नजर आया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी खंडवा के लोकप्रिय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा में मैं दीपमाला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जून का महीना अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान हो या तपती दोपहर से परेशान आमजन, सभी को मानसून की पहली फुहार का बेसब्री से इंतजार है।

अभी हमारे जिले में बारिश ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उम्मीदों के बादल जरूर हर दिल में उमड़ घुमड़ रहे हैं। खेत तैयार, धरती तैयार है और तैयार है वे आंखें जो बादलों को बरसते देखने की राह देख रही हैं।

0: के साथ हम लेकर आए हैं आज का गुड मॉर्निंग खंडवा। आज के कार्यक्रम में बात होगी उत्तम स्वास्थ्य की, जानेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, सुनेंगे ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल सिकल सेल मित्रों से हुई बातचीत, साथ ही महेश नवमी मुहर्रम पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े विशेष वार्ता और साक्षात्कार भी आपके लिए इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज के गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: श्रोताओं, सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसके प्रति जागरूकता और समय पर जांच बेहद आवश्यक है। इस बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विगत 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिकल सेल उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सिकल सेल मित्रों का उत्साह और समर्पण देखने योग्य था। आइए सुनते हैं सिकल सेल मित्रों से की गई विशेष बातचीत। आपसे बात की है आकाशवाणी खंडवा के वरिष्ठ उद्घोषक विद्याधर मूले ने।
3: विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज ओंकारेश्वर में आयोजित है, जहां माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सिकल सेल मित्रों को सम्मानित करेंगी और यहां एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी है। मैं अपने बिल्कुल सामने देख रहा हूं, माननीय राष्ट्रपति की एक बड़ी सी कुर्सी है और उसके आसपास सिकल सेल मित्र मौजूद हैं और उन्हीं में से एक सिकल सेल मित्र से हम आज बातचीत कर रहे हैं। श्री मोहन जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं सिकल सेल बीमारी के बारे में और उस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस तरह से वो काम करते हैं और कितना काम उन्होंने किया है और कितना काम होने की ज़रूरत है।
4: जी सर, मैं मोहन रोगड़े और खालवा ब्लॉक से हूँ और सिकल सेल रक्त मित्र हूँ। मेरे द्वारा ट्राइबल क्षेत्र खालवा, हम लोग लगातार यहाँ पर रक्तदान के शिविर लगवाते रहते हैं और आज अवसर मिला है कि सिकल सेल जो मित्र हैं उन्हें यहाँ जो आज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उन्हें भी इन्वाइट किया गया है। राष्ट्रपति महोदय आएगी और सर्वप्रथम सिकल सेल मित्र के साथ एक सेल्फी फोटोग्राफ से भी होगा। ये जागरूकता कार्यक्रम है क्योंकि सिकल सेल इस बीमारी के बारे में पता हो, लोग अधिक से अधिक इसकी स्कैनिंग कराए, टेस्टिंग करवाए। क्या होता है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक है, कि यदि माता पिता को है और यदि माता पिता ने समय पर पूर्व में चेकिंग नहीं कराई, टेस्टिंग नहीं कराई, तो होने वाले उनके जो बच्चे हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। रक्त विकार की है ये एक बीमारी अनुवांशिक, कि ब्लड के माध्यम से होती है, कि जैसा कि जो हमारा रक्त है इसके अंदर गोल आकार की रक्त छोटी छोटी कणिकाएँ होती है और जब सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी होती है तो उसका आकार बदल जाता है, उसका आकार द्रांति आकार का हो जाता है, कि जो कि जब वो ब्लड के साथ जाती है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बीमारी देखा जाए तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, अधिक से अधिक लोग टेस्ट कराएंगे, स्कैनिंग कराएंगे और इस बीमारी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
3: मोहन जी, आमतौर पर सिकल सेल से जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसे बहुत कमज़ोरी होती है, ऑक्सीजन लेने में उसे दिक्कत होती है, इस तरह की जो तकलीफें हैं जो दूसरी बीमारियों में होती है, और ये एक अलग विषय है कि आदिवासी इलाकों में बीमारी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप लोगों को किस तरह समझाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हमें ये इस तरह की घातक बीमारी है, तो क्या प्रक्रिया रहती है, क्या तरीका रहता है कि उन्हें जांच करने के लिए भी राज़ी करना?
4: इसके लिए सर महत्वपूर्ण पहलू जो वही है, जागरूकता है। मैं खुद ट्राइबल क्षेत्र से, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं की बोली भाषा में उनको एक बहुत साधारण शब्दों में हम समझा सकें कि यदि इस प्रकार के आपके अंदर लक्षण दिख रहे हैं तो हम खंडवा पे जिला स्तर पर टेस्टिंग होती है, वहाँ हम उनको मोटिवेट करके फर्स्ट तो यही है कि उनको लेकर आएँ, पहले समझाएँ कि भाई बहुत सारा ट्राइबल क्षेत्र में अंधविश्वास भी होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो अन्य चीज़ों से भी जोड़ देते हैं, लेकिन यदि हम उनकी बोली भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं तो अधिकांश लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, तो वहाँ भी कैंप के माध्यम से भी हम बताते हैं कि यदि आप इस प्रकार का ये टेस्ट कराते हैं तो इससे आपको पूर्व में ही शादी से पहले यदि कोई जो

श्रोताओं, मानसून का इंतज़ार केवल मौसम का इंतज़ार नहीं होता, बल्कि यह नई उम्मीदों, नई फसलों और नई ऊर्जा के आगमन की प्रतीक्षा भी होती है। इसी उम्मीद

0: पल है, वो यदि टेस्टिंग कराता है तो पूर्व में भी पता चल जाता है कि हमको किस प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आने वाले उनके बच्चे भी सुरक्षित होती है। तो सर जरूरी है जागरूकता, जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकारेश्वर के इस कार्यक्रम में हमारी मुलाकात एक सिकल सेल मित्र से हुई, और सिकल सेल मित्र वो होता है जो इस गंभीर बीमारी के बारे में सभी को जागरूक करने का प्रयास करता है, और जो मरीज़ हैं या जो तकलीफ़ में हैं उन्हें ये विश्वास होता है कि ये हमारे बीच का ही व्यक्ति है। कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर सिकल सेल मित्रों के साथ जुड़ी है, और राष्ट्रपति महोदय के साथ वो एक चित्र लेने वाले हैं। एक राष्ट्रपति महोदय के साथ एक बहुत अच्छा इनका फ़ोटो होगा जो इनके लिए उत्प्रेरणा का भी काम करेगा, प्रेरक का भी काम करेगा, और निश्चित ही इनके साथ और सारे सिकल सेल मित्र जुड़ते जाएंगे। आइए एक और मित्र से आपकी मुलाकात कराते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी सोलंकी है और मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग खंडवा जिले के जावर ब्लॉक में डोडवाड़ा ग्राम में है, जहाँ पर मेरे अंतर्गत चार गांव आते हैं, बिजोरा भील, गोकुल गांव, मथेला और डोडवाड़ा। वहाँ पर सबसे पहला तो हमारा काम होता है कि सभी लोगों का स्क्रीनिंग हो जाए कि उनको सिकल सेल की बीमारी तो नहीं है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट हमको पॉजिटिव मिलता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट तक भेजना, उनकी काउंसलिंग करना, फैमिली की काउंसलिंग करना, ये सारा काम हम लोगों का होता है। फिर उनको मंथली बुलाना अपने पास, उसके बाद उनका सारा चेकअप्स करना, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड अरेंज करना, ये सभी कार्य जो है हम लोगों के कार्यदायित्व में आते हैं। इसके अलावा सबसे मेन पार्ट हमारा जो होता है काउंसलिंग का होता है। लोगों में अभी तक सिकल सेल की जो जानकारी है वो पहुँच गई है, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण में जो लोग हैं उनको अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये बीमारी जो है किस तरह से फैलती है या किसको हो सकती है या इसके प्रिकॉशंस वो लोग क्या रख सकते हैं। तो इन सभी की काउंसलिंग करना हम लोगों का एक मेन पार्ट होता है, और मैं अपने कार्य क्षेत्र में रहकर चार मरीजों की सेवा कर रही हूँ।
1: विवाह के पूर्व सिकल सेल की जांच हो जाना जरूरी है, ये उन लोगों तक किस तरह से बात आप पहुँचाती हैं, क्योंकि ये वो मानना सहज नहीं है, आसान नहीं है।
2: अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके अंतर्गत हमारी जो सरकार है वो ये कार्य कर रही है कि हमें ये देखना ही नहीं है कि किसकी शादी हुई है या नहीं हुई। 40 साल से ऊपर वाले जितने लोग हैं उनका टोटल 100% स्क्रीनिंग हमको करना है। इससे होता ये है कि जब सभी लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है तो वास्तविकता हमें पता चल जाती है, तो अलग से इसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी फैमिली में से कोई पॉजिटिव या कैरियर या फिर इस तरह से कोई पेशेंट निकलता है तो फिर उनके पर्टिकुलर घर की हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर आप दो कार्ड देते हैं, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है, तो उस कार्ड को जब हम लोग स्टडी करते हैं और उसके पीछे सब कुछ लिखा होता है हिंदी में, तो उसको पढ़कर हम उनको ये आसानी से बता सकते हैं कि आप शादी कर सकते हैं या आपको शादी नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है और काउंसिल हो जाते हैं।
1: तो ये 2047 का जो लक्ष्य है, आपको लगता है कि सिकल सेल मित्र सब मिलकर शासन के साथ सहयोग करके आप इस बीमारी को पूरी तरह से काबू में ला सकेंगे?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अभी सिकल सेल के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जितने भी आदिवासी, ज़्यादातर उस पे टारगेट होता है जहाँ पर ज़्यादा ये बीमारी मिलती है, तो जितने आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर बहुत प्राथमिकता से इस कार्य को किया जा रहा है, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में मतलब एक एक मोहल्ले घर तक जाकर अगर ये काम कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये 2047 के पहले ही ये टारगेट हम लोग पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत इसकी जागरूकता बढ़ गई है और लोग इसको समझने भी लग गए हैं।
1: एक चित्र के बारे में बताइए, आज यहाँ एक फोटोग्राफ आपका खींचा जाने वाला है, राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय और सारे मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित है, इस चित्र की आपके लिए क्या अहमियत है?
2: देखिए, कार्य तो हम लोग जितने भी हमारे सरकारी स्वास्थ्य विभाग के जितने प्रोग्राम हैं हम सभी पूरे तन मन धन से अपना कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा लगता है ना, छोटा सा एक अवार्ड मिला या फिर एक अपॉर्चुनिटी, तो बहुत खुशी हो रही है कि बोलते ना, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, तो आज ऐसा लग रहा है कि कुछ फल मिला, तो ये बहुत खुशी की बात होती है हमारे लिए, और एक मतलब हम अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है जिसका हमें इस तरह से रिवॉर्ड मिल रहा है, और आगे भी हम करते रहेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 23 जून को महेश नवमी का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान महेश के प्रति आस्था, सामाजिक एकता और सेवा भावना का संदेश देने वाला यह पर्व समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के संबंध में हमने माहेश्वरी समाज पंचायत अध्यक्ष नारायण बाहेती जी से बातचीत की। आज के गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है बाहेती जी आपका।
1: नमस्कार जी।
0: आगामी दिनों में महेश नवमी मनाई जाएगी
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: हमारे श्रोताओं को बताइए कि महेश नवमी का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और यह पर्व हमें क्या संदेश देता है।
1: महेश नवमी माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब हम लोग जो माहेश्वरी समाज पहले राजपूत हुआ करते थे, तब तो भगवान महेश जो है प्रकट हुए और उन्होंने हमारे हाथ से तलवार लेके और तराजू दी और जब से वेश संप्रदाय अपनाया, क्योंकि वो 72 थे, वो 72 खांपे के रूप में परिचित हो गए, जैसे बाहेती, काबरा, ये सभी उसके अंदर गोत्र के रूप में है और पूरे भारत में माहेश्वरी समाज फैला हुआ है। आपस में भाईचारा और व्यापार जो है हर जगह प्रतिष्ठित व्यापारी की भूमिका निभा रहे हैं। उद्योग और देश के विकास में माहेश्वरी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हमारा माहेश्वरी समाज का नारा है कि राष्ट्रीयता प्रथम, पहले देश उसके बाद दूसरा काम।
0: जी, इस वर्ष महेश नवमी के अवसर पर समाज द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 6 दिवसीय महेश नवमी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर हमने 18 तारीख गुरुवार से क्रिकेट, पहले पुरुषों का क्रिकेट, महिलाओं का क्रिकेट, उसके बाद योगासन जो 21 को हम योगासन भी करेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए श्लोक पठन, फैंसी ड्रेस, 1 मिनट कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद जो है अनेकों आयोजन जो है सांस्कृतिक नाटक, नृत्य वगैरह, डांस वगैरह और माहेश्वरी समाज की अपनी बोली, अपनी पहचान, इस प्रकार के आयोजन होंगे। साथ ही जो मुख्य दिवस है 23 तारीख को महेश नवमी है, 23 तारीख को सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है मंदिर में, सत्यनारायण मंदिर में बुधवारा में अभिषेक होता है, उसके बाद एक प्रभात फेरी निकाली जाती है। राम मंदिर बड़ा भवन से प्रारंभ होकर विभिन्न रास्तों से होते हुए केवल राम पेट्रोल पंप होते हुए सत्यनारायण मंदिर में इसका समापन किया जाता है। महाआरती होती है, भोग लगाया जाता है और उसी दिन महेश नवमी को जो मेघावी छात्रों का सम्मान किया जाता है, वृद्ध जनों का जो 75 से ऊपर के आयु के उनके सम्मान किया जाएगा, विशेष प्रतिभा जो भी समाज की होनार है उनका भी सम्मान किया जाता है। साथ ही जो प्रतियोगिताएं विभिन्न आयोजित की जाती है उनमें विजेताओं को पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सभी पदाधिकारी मिलजुल कर इसमें करते हैं। शाम को रात्रि में सहभोज भी होता है सभी का साथ में।
0: जी, युवाओं को समाज और संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
1: युवाओं को समाज और संस्कृति से जहाँ उन्हें धार्मिक आयोजन सिखाए जाते हैं, सांस्कृतिक आयोजन सिखाए जाते हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यशालाओं का आयोजन करके उनको प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाता है। उनको ये प्रेरित किया जाता है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, समय समय पे गाइडेंस शिविर भी हम लोग लगाते हैं कि ताकि युवा जो है, आज का युवा ही कल का भविष्य है।
0: जी, भगवान महेश जो शिव है साक्षात, उनके आदर्शों को वर्तमान जीवन में अपनाने की आवश्यकता क्यों है।
1: बहुत जरूरी है, जैसे

0: भगवान शंकर यूं कहें कि सभी अलग अलग विरोधाभासी चीजों को अपने साथ रख के भी सृष्टि को जो है सब साथ लेके चले। उनके जैसे उनके पुत्र का वाहन है मयूर, मयूर गले में इनके सांप है, साथ में गाय है। ये सभी चीजें एक दूसरे के विपरीत है, जो एक दूसरे पे प्रभाव डाल सकती है और जो चोट पहुंचा सकती है। लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया कि सभी को साथ में रख के समन्वय की स्थिति भी बनाई जा सकती है। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, उनके परिवार की बात करें तो चूहा है, सांप और ये सबको साथ में पूरे परिवार के सहित जो लेके चलते हैं, ये समन्वय की स्थिति बनाती है और उनकी प्रेरणा मिलती है कि पूरा समाज भी एकजुट रहे, सभी साथ मिलकर अपने कारोबार करें, साथ साथ मिलकर रहें, एक अच्छी भावना रखें। मिलजुल कर रहेंगे तो हर काम निश्चित रूप से संभव होंगे, एकता बनी रहेगी।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश दिया है। भगवान शिव का जो परिवार है वो तो हम सभी के लिए आदर्श है। और मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि महेश नवमी के अवसर पर आप समाजजनों और नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी आपस में भाईचारा बना के रखें, भले इष्ट हमारे अलग अलग हों, लेकिन आपस में मानवता का रिश्ता हमेशा कायम होना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा सम्मिलित हों, हमेशा काम आए, लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करें अपने से जितना बन सके। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो आज के दौर में जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, वो ऐसे प्रयास करें कि हम रोजगार किसी से मांगे नहीं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे व्यवसाय खोजें, ऐसे कारोबार करें कि अन्य को भी रोजगार दें। निश्चित रूप से अगर हमारा युवा अगर रोजगार पाता है तो सिर्फ हमारे शहर का तो विकास होगा ही होगा, साथ में जो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, हमारा राष्ट्र जो है उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए बिना ईगो के। सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना ईगो ना पालें, बिना ईगो के पाल के अगर पीड़ित मानव सेवा हो या अन्य जो भी कार्य हो उसमें हमसे जितना बन पड़े सहयोग करें, अगर सहयोग ना भी कार्य करें तो कम से कम सकारात्मक भूमिका अवश्य निभाएं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को, माहेश्वरी समाज को भी महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाहेती जी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके माध्यम से सभी लोग इससे प्रेरित भी होंगे और आपस में भाईचारा बना रहे हैं आपकी जो पहल के लिए। आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का लोकप्रिय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। श्रोताओं, आने वाली 26 जून को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। यह अवसर हमें त्याग, बलिदान, सत्य और मानवता के मूल्यों की याद दिलाता है। मुहर्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी देता है। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं राजिक खान।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने

मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे योम आशुरा के नाम से जाना जाता है, हम इस पर बात करेंगे। यह केवल इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वो दिन है जो पूरी इंसानियत को हक, इंसाफ और आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व निछावर करने की सीख देता है। दुनिया भर के लोग एक महान शहादत और सत्य की जीत को याद करते हैं। श्रोताओं, कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि योम आशुरा क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि इस दिन का महत्व सदियों पुराना है। इस्लाम और प्राचीन इतिहास के अनुसार इसी मुहर्रम की 10 तारीख को ईश्वर ने हजरत मूसा, जो कि एक पैगंबर हैं, और उनकी कौम को मिस्र के अत्याचारी राजा फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। अल्लाह ने चमत्कारिक रूप से लाल सागर के बीच से रास्ता बनाकर हजरत मूसा और उनकी कौम को सुरक्षित पार कराया और अत्याचारी फिरौन को और उसकी सेना सहित समुद्र में डुबो दिया। इस तरह यह दिन जुल्म के खात्मे और सत्य की विजय का प्रतीक बना, जिसकी खुशी और शुक्रगुजारी में प्राचीन काल से ही इस दिन रोजा रखने की परंपरा है। लेकिन आज से लगभग 1400 साल पहले इसी 10 मुहर्रम के दिन इतिहास में एक और ऐसी घटना घटी जिसने इस दिन को पूरी मानवता के लिए एक भावुक और अमर संदेश बना दिया। यह गाथा है हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की। सन 61 हिजरी में इराक के करबला नामक तपते रेगिस्तान में एक तरफ समय का क्रूर शासक यजीद था, जिसके पास हजारों की संख्या में हथियार से लैस सेना थी। दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे, जिनके पास केवल 72 साथी थे। इन 72 लोगों में उनके परिवार के सदस्य, महिलाएं, बूढ़े और 6 महीने का बच्चा अली असगर भी शामिल थे। यह लड़ाई किसी जमीन या सत्ता के लिए नहीं थी, यह मुकाबला था सिद्धांतों का। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके गलत और अत्याचारी कामों पर अपनी मुहर लगा दे, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, हुसैन का सिर कट सकता है लेकिन जुल्म के आगे झुक नहीं सकता। करबला का संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया के महान विचारकों ने इमाम हुसैन को नमन किया है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सत्य को जीवित रखने के लिए सेना या हथियारों की आवश्यकता नहीं होती। इमाम हुसैन ने अपने जीवन का बलिदान देकर साबित कर दिया कि न्याय को किसी बौद्धिक शक्ति की जरूरत नहीं होती। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे सामने आधुनिक चुनौतियां हैं। आज भी समाज में असमानताएं, झूठ और नफरत जैसी बुराइयां मौजूद हैं। ऐसे समय में योम आशुरा को याद दिलाया जाता है कि हम अपने हिस्से की सच्चाई के साथ खड़े रहें। इमाम हुसैन की याद मनाने का असली मकसद तभी पूरा होगा जब हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, यानी हम कमज़ोरों की आवाज़ बने, न्याय का साथ दें और समाज में शांति व भाईचारा फैलाएं। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अब बात एक ऐसी सुविधा की जो विदेश यात्रा, शिक्षा, रोजगार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पासपोर्ट। अब हमारे खंडवा जिले में भी पासपोर्ट सेवाओं का लाभ नागरिकों को उपलब्ध हो रहा है। पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में हमने डाकघर अधीक्षक खंडवा DS चौहान जी से विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं यह उपयोगी जानकारी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि खंडवा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से जिले के लोगों को क्या प्रमुख लाभ मिले हैं।
2: धन्यवाद मैडम। आप जैसे सभी जानते हैं कि पहले पासपोर्ट इंदौर और भोपाल में ही बनते थे और अभी 12/3/2024 से खंडवा में भी स्टार्ट हो गया है। और पहले भोपाल और इंदौर जाने में निश्चित रूप से पैसा भी ज़्यादा लगता था और समय भी लगता था, तो धन और समय दोनों की बचत भी है यहाँ पर खुलने से। और अभी तक हमने खंडवा में 13,700 पासपोर्ट बना दिए और प्रतिदिन का औसत लगभग 35 का है, तो अच्छा है, मतलब खंडवा जिले के लोग इसका लाभ ले रहे हैं
1: जी। ये बताइए कि जो पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया है वह क्या होती है और आम नागरिक किन दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है।
2: पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक वेबसाइट है जिसमें जाके आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। और दस्तावेजों की बात है तो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगता है। तो मुख्य रूप से इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी दस्तावेज इसके लिए मान्य है
1: जी। आपने देखा होगा कि कई गलतियां होती होगी लोगों से जो आवेदन करते हैं, आवेदन के दौरान लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं।
2: इसमें जब अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं तो एक अपॉइंटमेंट पर्ची जनरेट होती है, तो उस पर्ची पर सब इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ लें तो कोई गलती नहीं होगी। और मुख्य रूप से जो गलतियां होती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जो नाम या एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ लिखी है, फादर का नाम लिखा है, तो यही थोड़ा सा भरने में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई चिंता की बात नहीं, बाद में एडिट होकर इसको भी सही किया जा सकता है।
1: चलिए, अच्छी बात है कि एडिट होकर इसको सही किया जा सकता है आवेदन को।
2: जी,
1: ये बताइए कि जो पासपोर्ट बनवाने और पुलिस वेरिफिकेशन में सामान्यतः कितना समय लग जाता है।
2: पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट आपके घर तक पहुँचने में लगभग 30 दिन का समय है, और ये पासपोर्ट आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आपके घर पे डिलीवर होता है।
1: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे खंडवा जिला है उसके लिए भी पासपोर्ट सुविधाएं मिल गई है हमें। खंडवा जिले के नागरिक हैं उनके लिए आप क्या क्या संदेश है।
2: मैं यही कहूंगा कि पहले बड़ी मुश्किल होती थी मतलब पासपोर्ट बनाने में, लेकिन अब आजकल आम नागरिक भी जागरूक हो गए और ये बना रहे, और मतलब हमारे जिले में ही सुविधा उपलब्ध है। विशेषकर देखा ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, तो अच्छा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। जैसे अभी किसी को, जैसे पहले होता था कि किसी को फॉरेन जाना है या तो ही वो पासपोर्ट बनवाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग पहले से भी बनवा के रख रहे हैं ताकि कभी उनको फॉरेन जाने का चांस मिले तो उसका उपयोग कर ले। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप इसका फायदा उठाएं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत सारी सेवाएं हमारी, जैसे सेविंग बैंक की स्कीम्स है, उसमें भी काफी अच्छा ब्याज हम देते हैं। हमारे यहाँ इंश्योरेंस की स्कीम्स भी है जिसमें हम कम प्रीमियम अधिक बोनस से बढ़िया हम इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे रहे हैं। और एक विशेष हमारे और सेवा है आधार कार्ड बनाने की सुविधा है जिसमें आप आधार अपडेशन भी करा सकते हैं, नया आधार भी बना सकते हैं। और हमारा जो खंडवा संभाग है इसमें 4 जिले आते हैं, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा। तो जहाँ तक खंडवा जिले की बात है तो यहाँ पर भी हमारे 5 आधार सेंटर हैं।

0: तो श्रोताओं, आज के गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आज का यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स और पत्रों का, इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और सकारात्मकता बनी रहे, आप प्रसन्न रहें। अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। प्रस्तुति दीपमाला शिंदे की थी। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। JD वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने

0: और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कड़वाजी पटेल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कड़वाजी पटेल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मित्र एक गीत सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज आपके साथ हूँ मैं दीपमाला। और आपके फरमाइशी ईमेल्स और पत्र मेरे हाथ में हैं और ये जो पहला ईमेल मैं पढ़ रही हूँ ये है शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, छोटू मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े और वामिका गंगराड़े। खंडवा से कौसर भी पवार, हसीना भी पवार, अलमाज बानो, सबीना जहीर पवार। राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर। ग्राम छेगांव देवी खंडवा से है अशोक वाघे, वंदना वाघे और कान्हा वाघे। अहमदपुर खेगांव से है कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली। प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले और मंदा खंडाले। खंडवा से ही मोहम्मद हसनैन, हसू बाबा और मोहम्मद फाजिल। भिकन गांव से साफिया अरहान खोकर, अनस शिफा खोकर। घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सनावत से कालूसी बड़ोले, सीताराम हीरालाल बड़ोले, साहिल सुमन बड़ोले, विशाल हरिओम भावना बड़ोले। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से है सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर सार्थक अलौकिक चंचोलिया, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन। केदी रायमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेव विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि और अश्विन शाह। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीर सागर, संजय कुमार चौहान। नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परिप्रणीता सिद्धांत और टुकटुक गवाणकर। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और प्रिंस एकांश। आप सभी सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म में अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू को। गीत लिखा है रानी मलिक ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके मीते गीत। कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना पसंद किया है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आली और आयन बाबू। उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियर और दिव्यांशी विश्वकर्मा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार सुरलकर। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नीति कुमारी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। नेपानगर मध्य प्रदेश से है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। खंडवा से श्यामाबाई रायकवार। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानुप्रकाश, गीतिका खोरवाल। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। बुरहानपुर से है मोहन मुरलियार, आरुष आर्शिया। डेरपाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। उदयपुर से है रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल और प्रगति नाचानी। जोधपुर से ही रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमाक्ष। ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, कुमारी सपना सेन, ओम सेन, मम्मी द्वारकाबाई सेन। इंदौर निम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी। और इसी गीत को पसंद किया कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुंभार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को। संगीत अनुमलिक का फिल्म है दिल कितना नादान है।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म है पति पत्नी और तवायफ, और इस गीत को पसंद किया है बड़ा बमचो खंडवा से संजय मारकंडे और ममता मारकंडे ने। साथ ही है मारहरा दरवाजे एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन और अनम और यशफ अब्बासी। कोल्हापुर महाराज से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शोरिया, श्रेया संगीता और अनिकेत चौहान। जवानगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। रतनपुर से जितेन सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह गौड़ और देवराज। मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आशिया, शबीहा, अनस और रेहान। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराट, स्वीट्स अंशुमन और बेबी ओवी। नरवेल महाराज से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल और थोपान ताड़े। और मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। कुछ पत्र भी है मेरे हाथ में। सनावा से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। इसी गत को पसंद किया। मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति, प्रथमेश, सतीश, जगदीश तवर, सौभाग्यवती, उषा पाटिल ने। और इसी गीत को पसंद किया है। इंदौर से है स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश दादा, कार्तिक, संजना और ललिता नारायण ने। तो सुनिए आप सबकी सभी की पसंद पर पति पत्नी और तवायफ फिल्म का सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ का गाया ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है चांदनी फिल्म से, संगीत शिवहरि का, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, स्वर है आशा भोसले और विनोद राठौड़ के। इस गीत को पसंद किया है कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। वाशीमारा से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। हिंगोली महारा से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल। ग्राम बड़गांव माली से अजय, रीना, अनुज, अंश, अर्पिता और शशांक मालाकार। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। इसी गीत को पसंद किया है सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को. नमस्कार.
1: आपके मीत ये गीत.
0: अभी आप सुन रहे थे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं. सुबह के 9 बजने वाले हैं. अब से लेकर सुबह के 10 बजे तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चचोलोक में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं देव नेगी और पायल देव की आवाजों में वायु का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों

0: बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत. लकी अली रम्या की आवाजों में, इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत.

ये गीत था जानम समझा करो। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मजरूह के बोल थे। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहां से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

0: इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।
1: ना

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: भोजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना पल देना, सिर्फ एक तू है लाखों में अकेला।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गांवों को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत

0: सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर ऋजू बाफना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रूपये की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगर पालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ कमला आर्य को समिति बनाकर जांच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: अभी जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

राम राम बहनों होनी, आज ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन विशाखा। बहनों होनी, वर्षा ऋतु को लगभग आगमन हुई गयो। वर्षा ऋतु हम सबका लेना एक वरदान छे। वर्षा का आगमन सी हमका गर्मी सी राहत मिले न प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ी जाए। पेड़ पौधा बाग बगीचा हरा भरा होने लगे। मोर पपीहान की मधुर आवाज़ हमारा मन को आनंदित करी दे। नदी नाला तालाब हरा भरा हो जाए। नदी ना अपना पूरा वेग सी प्रवाहित होने लगे। आना किसान भाई बहन भी अपना खेत नम वावनी की तैयारी नम लगी जाए। बहन होनी, वर्षा का आगमन पर असो लगे कि पूरी प्रकृतियों का स्वागत का लेना आतुर छे। बहन होनी, वर्षा ऋतु यूँ तो हमारा लेन वरदान भी छे, आना हम सबका लेना बहुत जरूरी भी छे। पर वर्षा से पूर्व कुछ तैयारी ना हमको करी लेनु चाहिए। जैसा कि हमारा घर की छत यदि गलती होए तो हमका पुनः रिपेयरिंग करा लेनु चाहिए। जैसी लगातार वर्षा होने पर हमका किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होए। वर्षा काल में बारिश का समय में कीट पतंगा भी हुई जाए जी कि हमारा घर में प्रवेश करी जाए तो एकासी हमका कदी वो हमारी त्वचा में मस्कई जाए तो कोई नुकसान भी होने की संभावना न रहे। कान न भरे जाए बालक न का, तो ये सब से बचना का लेना हमारा घर की जो दरवाजा खिड़की न छे उनका पर जाली न लगा लेनु चाहिए जेकासी हम कीट पतंगा न सी बची सका। एका साथ है बहन न होनी, हमारा घर में जो भी बिजली का उपकरण छे उनका में हमका ये चेक करी लेनु चाहिए कि कहीं वायर

खुला तो नहीं है। तो इस तरह से उनका रिपेयरिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में कई रहे, चारों तरफ सीलन भी रहे, नमी भी रहे, तो ऐसा में करंट वरंट कोई लगी जाए बच्चा न कभी, तो सभी तार न का पुनः रिपेयरिंग करा लेना चाहिए। खेतवाड़ी में भी जैसी मशीन न रहे, घर पर भी रहे हमारा यहाँ, तो उनका हम कई सावधानी न बरतना चाहिए। एक साथ बैठना होनी घर का आंगन में यदि गड्ढा वगैरह छे, तो उनका में भी गिट्टी मट्टी नाकी कन उनका पूरी तरह से भरी देना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय में ये गड्ढा भर ही जाएगा तो हमारा घर का आसपास मक्खी मच्छर पनपने को भय रहेगा। और हम इनका पूरी तरह से भरी देवांगा तो हमारा यहाँ कीचड़ भी नहीं होएगा और साफ सुथरों भी रहेगा घर आंगणों हमारो। एक साथ बैठना होनी स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ सावधानी ना हमका रखनू चाहिए वर्षा काल में। बारिश का समय में ज़्यादातर भीगना से बचा, क्योंकि यदि हम भीग जावांगा तो हमका सर्दी जुकाम खांसी हुई जाएगा, और गीला कपड़ा भी हमका ज़्यादा देर तक नहीं पहनना चाहिए। यदि बारिश में आप कहीं गए आज ना कपड़ा गीला होगा तो तुरंत आई ना कपड़ा बदली लेना चाहिए। गीला चमटा कपड़ा पहनना से हमका त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना न रहे। तो बहन होने ये तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत न, अब हम सुने लेवाएं बहन साधना उपाध्याय को गायल इनिमाड़ी लोकगीत।

0: बैनहणी अभी हमने बैन साधना उपाध्याय को गायो इनी माड़ी लोकगीत सुनियो न अब सुनी लेवाइन ई भेटवार्ता जिको विषय छे जैविक कृषि से लाभ आना जानकारी दई रही ग्राम पटालदा की महिला कृषक बैन केसर पाचोले।
1: बहनों राम राम। बहनों आज हमारे साथ हैं ग्राम पटालदा की महिला कृषक बहन केसर पाचोले। केसर बहन राम राम।
2: राम राम।
1: केसर बहन आप जैविक खेती करती हैं, तो हमारी बहनों को जैविक कृषि के बारे में विस्तार से बताइए कि जैविक कृषि आखिर क्या होती है।
2: सभी दीदियों को राम राम। जैसे अपने खेत में अपन रासायनिक दवाइयां डालते हैं, उससे अपना खेत खराब होते जा रहा है, दिन पे दिन जमीन कड़क होती जा रही है। इसके लिए जैविक खेती करने के लिए अपन अपने घर में ही जैविक उत्पाद बना सकते हैं
1: जी।
2: जैसे अपने यहाँ पशु से जो गोबर निकलता है उसको केचुआ खाद बना के अपने खेतों में डालें
1: जी,
2: जिससे अपने खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी और मिट्टी में नरमपन रहेगा, मतलब यानी कि वो खराब नहीं होगी। जैसे कड़क अपन जो रासायनिक दवाइयां डाल रहे हैं उससे अपने जमीन जो है भारी होती जा रही है, कड़क होती जा रही है, तो ये नहीं रहेगी। और इसके लिए अपन जैविक उत्पाद में दवाइयां भी बनाते हैं।
1: केसर बहन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैविक खेती के द्वारा हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं।
2: जैविक खेती में अपन सभी प्रकार की फसलें ले सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी फसलें हैं या छोटी है तो उसको नहीं ले सकते। जैविक तरीके से हर फसल को कवर किया जा सकता है। जैसे अपने सोयाबीन है, मूंग है, तुअर है, मक्का है। अभी हमारे यहाँ मक्का लगाई हुई थी जिसमें हमने जैविक तरीके से किया, उसको वर्मी कंपोस्ट और जैविक दवाइयों द्वारा ही उसको तैयार किया है।
1: जी जी। तो आप जैविक खाद घर पर बनाते हैं
2: जी।
1: तो आप हमारी बहनों को जैविक खाद को घर पर किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बारे में विस्तार से बताएं।
2: जी देखिए, जैविक खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें 6x4 का एक गड्ढा तैयार करना है, 2 फीट गहरा
1: जी।
2: उसमें अपन ये अपने

0: घर घरेलू उपाय बता रही हूँ सबसे मेन, यानी कोई खर्चा नहीं है उसमें बिगर खर्चे की चीज
1: जी।
0: अब वैसे तो अपन मार्केट से आने बेड वगैरह ला के बना सकते हैं, पर कोई दीदी को खर्चा ना लगे इसके लिए घरेलू उपाय है ये सबसे मेन।
1: जी।
0: कम से कम यानी लागत में कैसे अपन खाद तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले 6x4 का एक गड्ढा तैयार करना है अपने को, जो 2 फीट 1.5 फीट 10 है उमदा हो, उसको एक पन्नी बिछा के उसमें जो पॉलीथिन आती है
1: जी।
0: वो बिछा दो, उसमें गोबर इकट्ठा करो, पहले 8 दिन का गोबर उसमें इकट्ठा कर लो, गोबर के ऊपर पानी डालो, पानी डालने के बाद में गोबर जब ठंडा हो जाएगा उसमें जब यानी केसी छोड़ना है अपने को।
1: कैसा बहन, मैं आपसे यहाँ एक बात और पूछना चाहूंगी कि आपने केचुए के बारे में बताया, तो जो हमारी बहनें घर पर जैविक खाद बनाएंगी तो वो केचुए
0: हाँ,
1: कहाँ से ले सकती हैं?
0: कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाता है केचुआ, वहाँ तो केचुए छोड़ना है अपने को उसमें, जैसे बेड में अपन ने 8 दिन गोबर इकट्ठा करने के बाद में उसमें पानी डाल के उसको ठंडा करना है पहले 1 दिन तक।
1: जी
0: पानी डालने के बाद में जब गोबर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गोबर में बहुत गर्मी होती है, अगर डायरेक्ट केचुआ छोड़ेंगे तो केचुआ मर जाएगा।
1: जी जी
0: गोबर ठंडा होने के बाद में उसमें केचुए छोड़ दिए, छोड़ने के बाद एकदम जैसे अपन गोबर डालेंगे, क्योंकि 8 दिन में कोई बेड भरेगा नहीं वो, तो अपने को एक कोने में अपन ने सबसे पहले गोबर डाला, उसमें केचुआ छोड़ दिया, उसके साइड से अपने को गोबर डालना है उसमें से,
1: जी
0: उसके ऊपर नहीं डालना है, जहाँ केचुआ छोड़ा है ना वहां पे गोबर नहीं डालना है।
1: जी जी
0: तो जैसे जैसे यानी कि जहाँ अपन ने वो केचुए छोड़े हैं उसी प्रकार से वो आगे आगे यानी बढ़ते हुए चले जाएंगे, केचुए अपने मन से चले जाएंगे सब दूर पूरे बेड में,
1: जी जी जी
0: और कम यानी उसको तैयार होने में और हर 2 दिन के बाद में उसमें पानी छिटना है, छाँव करके रखना है डायरेक्ट, यानी कि धूप नहीं जाना चाहिए उस पर, क्योंकि धूप के कारण भी केचुए मर सकते हैं,
1: जी
0: और उसमें पानी छिटना पड़ेगा हर 2 दिन के अंदर, यानी उसमें ठंडाई बनी रहेगी, इतनी ठंडाई बनी रहेगी उतनी जल्दी खाद तैयार होगा वो।
1: जी
0: तो अपने को यानी 1 से 1.5 महीना लगता है उसमें, 45 दिन का है, 45 दिन में खाद तैयार हो जाती है। तो
1: जी
0: बढ़िया है, सभी दीदियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खाद तैयार करें और अपने जो खेती धूम खराब हो रही है उनको बचाएं। खाद बनने के बाद में जब आप वो खाद तैयार हो जाएगा तो ऊपर जैसे चाय पत्ती की तरह, यानी कि अपनी चाय पत्ती आती है ना मोटी वाली, उस तरीके से ऊपर पूरा मिट्टी जैसा दिखने लग जाएगा वो खाद तैयार होने के बाद में।
1: अच्छा
0: उसमें आप कचरा भी डाल सकते हो, पत्ते भी डाल सकते हो, पर उसके साइड एकदम यानी जहाँ केचुआ छोड़ा है अपन ने उसके ऊपर नहीं डालना है।
1: हाँ, साइड से डालें।
0: हाँ, साइड से डालें, तो साइड से जैसे वो खाद जहाँ अपन ने डाला है केचुआ वहाँ की खाद तैयार हुई कि वो पूरा कवर कर लेगा केचुआ उसके मन से
1: अच्छा, केचुए सिर्फ एक
0: उसमें।
1: बार छोड़ना है, फिर
0: हाँ,
1: बाद
0: एक
1: में
0: बार
1: साइड
0: छोड़ना।
1: साइड में गोबर डालते जाना है।
0: हाँ,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो मैंने 45 दिन के अंदर वो खाद पूरा तैयार हो जाएगा। खाद तैयार होने के बाद में वो पूरा मिट्टी की तरह, जैसे अपन मिट्टी ऐसे एकदम पानी डाल के मिट्टी अपन देखते हैं ना कि छान देते तो मिट्टी कितनी अच्छी दिखती है वो, उस तरीके से उसका कलर एकदम चाय पत्ती की तरह काला कलर हो जाएगा मिट्टी का, यानी
1: अच्छा
0: गोबर का, और वो तैयार होके ऊपर ही आ जाएगी और केचुए नीचे चले जाएंगे उसमें।
1: अच्छा तो ये तो
0: 45 दिन
1: आपने खाद तैयार करने की जो है विधि बताई। अब
0: जी
1: जैसे कोई हमारे किसान भाई या बहन है, जैविक तरीके से कोई भी खेती करना चाहते हैं, तो इसमें
0: जी
1: खाद डालने का जो तरीका है, जैविक खाद का उपयोग करने का जो तरीका है वह क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: जी मैम, देखो पहले तो अपन कोई पौधे लगाते हैं, पौधे के विषय में बताते हैं, जैसे कोई वृक्ष लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं अपन, तो सबसे
1: जी
0: पहले गड्ढा करना है, गड्ढे के अंदर यानी वर्मी कंपोस्ट खाद डालना है अपने को,
1: जी
0: उसके बाद मिट्टी डालना है और फिर यानी कि पौधे को उसमें लगाना है, यानी एक परत पहले खाद की डाल के और थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर उसके अंदर पौधा लगाएंगे, तो उसमें जो फंगस लगने

0: और फिर यानी कि पौधे को उसमें लगाना है, यानी एक परत पहले खाद की डाल के और थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर उसके अंदर पौधा लगाएंगे, तो उसमें जो फंगस लगने वाले रहते हैं उसमें एक दवाई भी बनती है, 5 पत्ती काढ़ा,
1: जी
0: तो जो भी जैविक तरीके से बनती है, तो उसमें यानी कि ना पूरे ये अपने जो नीम और इनसे बनती है वो, तो उसको भी अपन किसी पौधे को लगा रहे हैं, और उसमें अगर उसका पानी अपन डालते हैं तो उसमें फंगस लगने का डर नहीं रहता।
1: जी जी
0: तो पौधे लगाने में तो अपन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जैसे फसल में करना है, फसल
1: जी
0: में या तो अपन बोने से पहले छिड़काव कर दो, उसमें डाल दो, तो उसमें ज्यादा खाद लगती है। और अगर
1: जी
0: अपन जैसे मक्का लगा रहे हैं तो उसके जो पौधे रहते हैं पौधे के पास पास से थोड़ी थोड़ी रखना है, जैसे अपन यूरिया और डीएपी देते हैं ना उस तरीके से।
1: जी जी यानी बुआई के बाद।
0: हाँ, बुआई के बाद दे सकते हैं, या अपन जैसे गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं में अपन कुछ लोग डीएपी मिला के बोते हैं, यूरिया मिला के बोते हैं, उस तरीके से अपन उसके साथ में मिला के बो सकते हैं, यूरिया
1: जी
0: डीएपी न मिलाते हुए, तो
1: जी जी
0: दोनों तरीके से दे सकते हैं उसमें।
1: जी जी आपने यहाँ पर जैविक कीटनाशकों के बारे में भी बात की है, तो
0: जी
1: आपसे मैं यह जानना चाहूंगी कि जैविक कीटनाशक किस तरह से तैयार किए जाते हैं।
0: जैसे अपने को जैविक कीटनाशक 3 प्रकार से बनाते हैं हम अभी, एक बनाते हैं अग्निअस्त्र, एक ब्रह्मास्त्र और एक 5 पत्ती काढ़ा। तो जो 5 पत्ती काढ़ा बनता है उसमें 5 प्रकार की पत्तियां लेते हैं, जो पशु नहीं खाते हो, ऐसी पत्तियां जो जानवर नहीं खाता
1: जी
0: वो पत्तियां चाहिए अपने को, जैसे नीम की पत्ती, अकाव की पत्ती, धतूरे की पत्ती, पपीते की और करंज की, 5 प्रकार की पत्तियां लेते हैं, दो दो
1: जी
0: किलो। इसके बाद में अपन लेंगे 5 लीटर गौमूत्र लेंगे उसमें, और 5 किलो गाय का ताजा गोबर, जो यानी पहले का नहीं हो, यानी एक नाइट रुका हुआ नहीं हो, तुरंत का हो
1: ताजा
0: वो वाला
1: गोबर।
0: गोबर। हाँ,
1: जी
0: ताजा गोबर चाहिए, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और दो दो किलो सभी प्रकार की पत्तियां लेना है। उन सभी को एक टंकी में अपन डाल के, टंकी में सभी चीज को जिसमें गोबर का घोल बना के डालेंगे, अपना गौमूत्र डालेंगे, सभी प्रकार की पत्तियां काट के डालेंगे उसमें टंकी में, और फिर उसको 100 लीटर पानी से भर देंगे।
1: जी
0: 100 लीटर पानी से भरने के बाद में उसमें एक बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो मिट्टी लाके उसमें डालना है, जिससे वो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसमें, जो यानी कि अपने पौधों को खराब होने, और उसमें उसको यानी कि अपन 7 दिन तक टंकी को ढक के रखेंगे, और सुबह शाम डंडे की सहायता से उसको घुमाना भी है 7 दिन तक। 7 दिन के बाद में वो कीटनाशक तैयार हो जाएगा, जो यानी अपनी फसलों को खराब करते हैं जो कीड़े या इल्लियां, तो उसको यानी कि ना 5 दिन 7 दिन के बाद में 2 लीटर दवाई को अपन को 14 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करना है, पौधे को पूरी तरीके से गीला करना है, तो यानी

आना जानकारी दे रही थी ग्राम पटालदा की महिला कृषक बहन केसर पाचोले। ना आप चलान घरेलू नुस्खा की तरफ। बहन होनी, जीरा को सेवन करनु बहुत ही लाभप्रद है। जीरो ये तो हमारा रसोई घर में बहुत ही लाभ मिले। यदि हमारा शरीर में पानी की कमी हो या मूत्र संबंधी कोई विकार हो तो हमको कई करना चाहिए कि एक चम्मच जीरा ख रात का समय में एक गिलास पानी में भिंजी न रखी देवा। रात भर ये पानी का रखेल रहना देवा और सुबह सी खाली पेट ये जीरा का पानी ख पी लेवा और बचेल जीरा ख चबई चबई कर न खाई लेवा। एकासी हमारा का पाचन भी अच्छा होएगा और मूत्र संबंधी विकार भी नहीं होना का, शरीर में पानी की कमी भी नहीं होएगा। तो इस तरह से हमका जीरा को उपयोग करनु चाहिए। अब बारी छे टिप्स की। बहन होनी, वर्षा काल में हमारा आसपास मच्छर मक्खी होने की समस्या हो जाए तो मच्छर मक्खी ना का भगाने को जो घरेलू उपाय छे, देसी नुस्खो छे, ओका हम इस तरह से करी सकें। एक शीशी पानी का अंदर देसी कपूर डाल देवा, थोड़ो सो विनेगर न नीम को तेल ओका अच्छी तरह से मिले लेवा और एक सुबह शाम स्प्रे करी देवा तो हमारा आसपास मक्खी मच्छर नहीं होना का। अब बारी छे व्यंजन की। तो आज हम आपका बनौनो बताई रहा है कच्ची कैरी ना की खट्टी मीठी जेली। तो एक लेना अच्छी कच्ची कैरी ना कड़क होनी चाहिए, उलई लेवा, उनका धोई लेवा, पोईची लेवा, पानी सुखाड़ लेवा, जेका बाद उनका छिलका निकाली लेवा, फिर उनका किसी लेवा। किसना का बाद जितना मात्रा में किस छे उतना मात्रा में हमका लेनो छे गुड़। एका साथ है हमका पीसी हुई इलायची और थोड़ो सो भुनो वो जीरो लेनो। इनका हमका सबका एक मिलाई लेनो। गुड़ का भी किसेल मिश्रण में मिले लेवा, फिर कढ़ाई में डाला और फिर एक आँच पर धीमी आँच पर अच्छी तरह से पकाई लेवा। गुड़ को पानी सूखी जाएगा और जो मिश्रण है वो पूरी तरह से गाढ़ो हो जाएगा। मिश्रण जब गाढ़ो हो जाए तो एक थाली में हमको घी लगे लेनो चाहिए थोड़ो सो और ये गाढ़ा मिश्रण का थाली में फैले देनो चाहिए। ठंडो हो जाए जब ये पूरी तरह से तब एक थोड़ी देर हम फ्रिज में रखी देवा। फ्रिज में से निकाला, फिर छोटा छोटा टुकड़ा नमक काटी लेवा और इनका हवा बंद डब्बा में भर देवा। तो ये बहुत समय तक अच्छा रहे और ये कभी भी हम खाई सकें। तो इस तरह से आप भी खट्टी मीठी जेली बनो जो ना हमका बताओ जो कि आपसे बनी कि नहीं और कैसी लगी आपका। ना अब हम सुनी लेवाएं एक अरुणिमाड़ी लोकगीत जेखा गायोज बैंड हेमलता उपाध्याय ना।

बैनहोणी अभी हमने सुनो हेमलता उपाध्याय को गायो इन्हें माड़ी लोकगीत। बैनहोणी वर्षा काल में हमको पीना का पानी संबंधी स्वच्छता को भी विशेष ध्यान रखनु चाहिए। अभी इना समय में कभी कभी हम देखा है कि नल में भी पानी डोलो आवे, तो ये डोला पानी का हम साफ सुथरो करी कर अपना बर्तन में भरा। साफ करने की जो विधि है बहुत साधारण है, एक हम सभी कर सकें। जैसे कि एक बड़ी टंकी में पानी इकट्ठा करी लेवा और नीचे नीचे हम 5 से 7 बार 8 बार फिट करी घुमा देवा। 4 से 5 घट्टा में जितो भी गल छे वो सब नीचे बैठी जाएगा। इस तरह से हमारो पानी साफ सुथरा हो जाएगा। फिर ऊपर ऊपर का पानी खा सूती साफ कपड़ा से छानी ले माँ, और यदि हम करी सका तो पानी को उबाली न ठंडो करी कर न छानी न फिर मटका में भरा। इस तरह से पीने का पानी संबंधी स्वच्छता को ध्यान रखांगा तो हम बहुत सारी समस्या न सी बची सकें, क्योंकि वर्षा काल में पानी की खराबी से उल्टी दस्त जैसी समस्या न होनू आम बात छे। तो हम सावधानी रखांगा तो स्वस्थ रहांगा। अब हम सुनी लेवन एक अरुणिमाड़ी लोकगीत जेखा गायोज बैंड स्नेहलता भटोरेना।

बैन होनी अभी हमने सुनियो बैन स्नेहलता भटोरे को गायो इन्हें माड़ी लोकगीत एका साथ ज अपना कार्यक्रम को समय यहाँ जी पूरा हुई रोइन आपके बहन विशाखा का आज्ञा देव राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के आचे कलाकार हैं हरिहरन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
5: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
6: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
4: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ओ मीठी मीठी चाशनी।
7: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं हरिहरन की गाई कुछ सुगम संगीत रचनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे हरिहरन। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे हैं, अब से लेकर शाम के 5 बजे तक, माफ़ कीजिएगा, अब से लेकर शाम के 5:30 तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: रंग तरंग
2: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पेनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,

0: शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत है, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्रानी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

0: शुक्ल बसा ले जा।
1: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
2: अहमद फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है। ये गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेर ने इसे संगीत

0: एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों के

0: मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी विल्सिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की।

रेली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियाँ जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1 2 3 4

कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक-एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं, आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता है, बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए। और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरियाँ तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की, यहूदी। उसमें काफ़ी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिख कर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज़्यादा याद रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं, भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई

नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं। तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रेता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है?

सिलसिला फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिवहरी यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियाँ कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूम और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया, और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर हमारे श्रोता

0: अंगली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अज़ीज़ की गज़ल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफ़र, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियाँ हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियाँ हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफ़र और इस सुरीला सफ़र में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँरा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि

कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं, क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी है आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा

कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो जी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियाँ उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही हैं कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें और जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने हैं, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियाँ देशभक्ति से भरी अगर कुछ हैं तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है। ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर भी तोड़ दूँ तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है, मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियाँ बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ, और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है, और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। ग़ुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं

हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छूट आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की, संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है, और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है। और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं, तुम साथ दो, तुम साथ ना दो, मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला ये इस गीत का उन्हें पसंद है, कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज़ उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात, और बहुत प्यारा सुरीला सफ़र आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, और आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: और फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही सब।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंचकर श्री मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुर्गन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी MPLAD के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसी के तहत UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता।

0: के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर

0: प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।

0: बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहाल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बबाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा

0: कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, भरत व्यास के बोलों से, रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन

0: दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। हजरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज गुड मॉर्निंग की जगह, साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे।

0: और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे, है ना?
1: बिल्कुल। और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाओ, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
0: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा कि आज बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है? या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
3: पिछले भाग में आपने सुना,
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे, 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई, 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
5: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
6: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी, तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
7: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 4वां और अंतिम भाग।
4: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती, उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है, सोई हुई काम वासना को

0: गाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
1: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
2: अम्मा ये देखता क्या हूं?
3: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
2: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
3: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
2: बहुत अच्छा होता।
1: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
2: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
1: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
2: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा।

0: माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
1: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती।

0: उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा, यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया, सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर

0: का उत्तर आया।
1: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
2: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
3: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
2: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
3: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियाँ होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
4: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ

0: उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो
1: बिल्कुल
0: उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है।
1: बिल्कुल
0: तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ
1: जी
0: रूटीन ही नहीं था
1: रूटीन ही
0: असल
1: नहीं
0: में,
1: था कहना
0: और
1: चाहिए।
0: अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो
0: और
1: हमारे
0: वहीं
1: साथी
0: देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थीं, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियाँ करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये
1: तो
0: आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में
1: मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
0: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
1: बिल्कुल, गर्मी
0: और
1: से,
0: हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
1: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ़ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहाँ पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीज़ें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़े का कि साल भर इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
1: उसी में,
0: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहाँ पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से,
0: और इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन

0: ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल
0: छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे
1: पूरे
0: बाह के
1: पहनाएं।
0: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
1: और दीपा,
0: लेकिन
1: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर
0: जी
1: हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं।
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं
1: जी
0: चाहते।

0: डाला फिर से तो।
1: अब तो भाई
2: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियाँ कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी उलिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर गोल और चपटी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ़ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा ज़िद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिल के बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी। तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जाँच पद्धति है?
2: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है,

0: एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं बीएमआई, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। क्योंकि अगेन, अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है
1: जी।
0: कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक एमआरआई करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल सीटी स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
0: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे
1: जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज़ करते हैं, अपने आप ही गूगल के ज़रिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर आके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे। तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को।
0: जी,
1: फिर 4-5 साल उधर काम किया। फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी,
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं सवानंद किरकिरे, संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा और फिल्म का नाम है प्रेनीता।

आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, लिखते लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज

से बने हैं। इसका उत्तर है लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं। तो श्रोताओं इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन साइबेरिया रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है। तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका आरोह अवरोह थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: साथियों, आज हमने बात की आकाश चौहान से, जिन्होंने हमें हेल्थ, फिटनेस, डोपामिन डिटॉक्स और काम के साथ हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। चलिए सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। तो नमस्कार आकाश जी, स्वागत है आपका युवाणी के इस खास कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वृहद जी।
0: तो सबसे पहले तो आकाश जी, आप हमारे श्रोतागणों को आपके बारे में कुछ बताइए।
1: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा पूरा नाम आकाश चौहान है। मैं फिलहाल में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ।
0: अच्छा, और ये एग्जाम की तैयारी करते हुए आपके कोई पैशन या आपकी कोई हॉबी है?
1: मैं कभी अपनी हॉबी की बात कहूँ तो मैं अपने आप को फिट रखना काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उसी पढ़ाई पे रहता है। उसकी वजह से मैं सिर्फ एक टेबल पे बैठा रहता हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दूँ, ताकि जो मेरा ब्रेन है वो भी एक्टिव रहे।
0: क्या बात है। तो आप फिजिकल

0: एक्टिविटीज के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आप जिम ज्वाइन करके आपने रखा हुआ है?
1: जिम तो मैंने फिलहाल में ज्वाइन नहीं करा है। मैं योगा करता हूँ सुबह उठते से ही, और शाम में जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं एक लॉन्ग वॉक पे चले जाता हूँ।
0: अच्छा, तो आप इस तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में आपके फिटनेस के ऊपर भी आप ध्यान रख रहे हैं। आप जैसे आपने कहा कि आप फिटनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप डाइट में आप क्या करते हैं? जैसे न्यूट्रिशियस डाइट में आप किस टाइप से आप लेते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में?
1: मेरी डाइट काफ़ी नॉर्मल रहती है। मैं कुछ भी हाई प्रोटीन ये सब कुछ कंज्यूम नहीं करता हूँ। मैं कभी कहूँ तो मैं सुबह नाश्ते में ओट्स का दूध पीता हूँ। उसके बाद दोपहर में काफ़ी हल्का नाश्ता करता हूँ। मैं लंच करता हूँ जिसमें दो रोटी हो जाती है, घर में बनी कोई भी साधारण सब्जी हो जाती है। और शाम में भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हल्का खाना खाऊँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आकाश जी, आप ये बताएंगे कि आप एक दिन में कितने आवर्स तक आप फोन यूज करते हैं आपका?
1: मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम फ़ोन का उपयोग करूं, लेकिन ज़्यादातर तरीक़े से देखो तो मेरे फ़ोन का यूज़ 3 से 4 घंटे हो जाता है। कारण यही है, मेरी पढ़ाई पूरी ऑनलाइन चलती है, इसी वजह से मेरा पूरा ध्यान फ़ोन पर रहता है।

0: है जो कि मेरे बड़े भाई पापा सब जॉब पे चले जाते हैं, तो मुझे
1: अच्छा
0: एक शांति बड़ा वातावरण मिल जाता है जिससे मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं।
1: और आप
0: तो
1: ऐसे
0: मेरे हिसाब से
1: डिस्ट्रैक्ट नहीं
0: तो
1: होते,
0: ऑनलाइन ही अच्छा है।
1: आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते?
0: डिस्ट्रैक्ट
1: कई बार नोटिफिकेशन आता है फोन पे, जैसे हम फोन पे अगर पढ़ते हैं या लैपटॉप पे पढ़ते हैं तो एक नोटिफिकेशन हमें इजीली दिख जाता है, या फिर हम एक रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर बंधे नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लास में एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लास? तो फिर
0: ये बात तो मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लास में अपने पास फ्रीडम होती है। जब मेरा मन करता है बेड पे सो जाने का तो चले जाता हूँ, बाहर घूमने चले जाता हूँ, जो कि गलत है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठा ऑनलाइन, मैं अपने फोन में सारे ऐप है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन सबकी नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ ताकि
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: कोई भी डिस्ट्रक्शन फील ना हो।
1: क्या बात है। तो जैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है, मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जहाँ पर हमारे सामने हमारे जो टीचर और सर रहते हैं वो हमारी आंखों के सामने रहते हैं, हमें एक वैसा सराउंडिंग दिखता है। जब हमारे आसपास वाले जब हमें बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखते हैं तो हम अंदर से भी मोटिवेटेड फील करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और जब वैसा इन्वायरमेंट वैसा सराउंडिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। खैर बहरहाल वो तो सारी क्लासेस की चीज़ है। आपने जैसा कहा कि आप 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे आप फ़ोन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आपको आपके फ़ोन पर ही आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो
0: हाँ
1: जब आप ये फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? क्योंकि जैसे फ़ोन यूज़ करने से आँखों पर असर पड़ता है, और एक टर्म है डोपामिन, जो डोपामिन डिटॉक्स वाली वो टर्म है, आप उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें।
0: मुझे इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, डोपामिन डिटॉक्स टर्म का मतलब है, आम भाषा में कहो तो फील गुड हार्मोन। मेरे तरीके से बताओ तो डोपामिन मेरी बॉडी में तब रिलीज होता है जब मैं, जो मेरा पूरा कार्य है, मेरी पूरी पढ़ाई, मैं कभी उसको शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट कर लेता हूँ, तो एज अ रिवॉर्ड मेरी बॉडी में होता है और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है।
1: मतलब एज अ रिवॉर्ड हार्मोन, एज अ फील गुड हार्मोन हम डोपामिन को बोल सकते हैं।
0: हाँ, बोल सकते हैं।
1: तो ये टर्म के बारे में, जैसे आपने तो अभी हमें डोपामिन के बारे में बताया कि डोपामिन आखिर होता क्या है, जैसे ब्रेन में सिक्रीट होता है मुझे पता है, एंड जब हम एक रिवॉर्ड हार्मोन इसे बोलते हैं, हम जब किसी कार्य को हम कंप्लीट कर लेते हैं, हम टेस्टी अगर हम फेवरेट हमारा खाना खाते हैं तब हमारे अंदर ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जब हमारी कोई फेवरेट एक्टिविटी करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। तो ये आपने डोपामिन के बारे में बताया, आप ये जो टर्म है डोपामिन डिटॉक्स आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
0: डोपामिन डिटॉक्स एक पर्टिकुलर टर्म नहीं है, मतलब आपको जो भी चीज़ पसंद आती है, आपको आपके दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, आपका फेवरेट फूड जो भी है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, उससे आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको आम भाषा में कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। आप मेरी भाषा में कहो, जैसे कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कभी मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ, मुझे अच्छे रैंक मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो मेरी बॉडी में डोपामिन डिटॉक्स रिलीज होगा।
1: अच्छा, डोपामिन, आई थिंक डोपामिन एक हार्मोन होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हम उस चीज़ को डिटॉक्स कर रहे हैं हमारी बॉडी से। क्या इन केस जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, आज के टाइम पे जो यूथ है या फिर हर कोई, हम छोटे बच्चों को देख ले वो कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे ब्रेन में डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि हम जैसे फास्ट पेस जो रील्स होती है हमें थोड़ी देर में बहुत सारा कंटेंट हमें देखने को मिलता है, उस केस में हमारा डोपामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। तो डोपामिन डिटॉक्स से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया से या फिर ये जो फास्ट पेस्ड वीडियोस है हम अगर उनसे दूर रहते हैं कुछ आवर्स के लिए, तो उस केस में हमारा जो डोपामिन है वो डिटॉक्स होता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली हमारा डोपामिन रिलीज होता रहता है बॉडी में से जब हम वीडियोस देखते हैं, तो जब रियल हमें जो चीज़ें मिलती है, कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो आजकल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बट बाहर जाके वो नहीं खेल रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं तब उन्हें डोपामिन उनका रिलीज़ होता है, बट वो घर पे ही रह के फ़ोन चलाते तो उनका डोपामिन तो वहीं रिलीज़ हो गया, तो उन्हें बाहर खेलने जाने की अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि हम बाहर खेलें, दोस्तों से मिले। तो ये चीज़ डोपामिन डिटॉक्स कहलाती है, अगर हम फ़ोन को साइड में रखें 2-3 आवर्स के लिए, हम फ़ोन को साइड में रखें और उस हमारा जो डोपामिन है उससे हम रियल चीज़ों में हम लोग

0: तो इट इज़ कॉल्ड एज दिस डिटॉक्स। तो आप जैसे हम सोशल मीडिया के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया आप चलाते होंगे या नहीं चलाते आकाश जी?
1: हाँ मैं चलाता हूँ।
0: आप चलाते हैं, तो आप दिन में कितने आवर्स तक आप यूज़ कर लेते हैं सोशल मीडिया?
1: आम तौर पे मेरा 1 से 1.5 घंटा हो जाता है दिन भर में।
0: 1 से 1.5 घंटा आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये
1: हाँ
0: पॉजिटिव है या निगेटिव है सोशल मीडिया यूज़ करना? एज अ यूथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यूवाणी पर हम सारे यूथ को हम डेडिकेटेड प्रोग्राम करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज़ आपको क्या लगता है? आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है, तो ये सही है या गलत है?
1: सोशल मीडिया का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इस चीज़ की है कि आप समय से ज़्यादा उसको दे रहे हो। आम तौर पे सिर्फ आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है। मैं 1 से 1.5 घंटे चलाता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ गलत चीज़ है ये। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके सोशल मीडिया ऐप्स
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, आपका वॉइस चले गया था आकाश जी।
1: हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपको।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ
2: हाँ, आपका वॉइस चले गया था आकाश जी।
1: मैं वही कह रहा हूँ आपको, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सोशल मीडिया ऐप से जितना दूर हो सकूँ रहूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर चले जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो आप क्रिएटर हैं, आप कंज्यूमर हैं? आप ये बताइए पहले तो, सोशल मीडिया पे
1: मैं कंज्यूमर हूँ।
0: आप कंज्यूमर हैं, तो मुझे कहीं तक ये लगता है कि अगर हम एज अ कंज्यूमर उस चीज़ को ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और जो चीज़ हमें नहीं लेनी है हम वो ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पार्ट में जाता है। बट अगर हम एक क्रिएटर है, अगर हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कंटेंट हमारे हेल्प के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक गुड वे भी है। कई लोगों की सोशल मीडिया ने हेल्प भी करी है, कई लोगों ने उस पर करियर बनाया है, कई लोग उससे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं हम यूज़। तो आकाश जी, बहुत अच्छा लगा। और एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, देखने में, खेलने में भले ही नहीं बट देखने में, और आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है?
1: फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करें तो फिलहाल मैं क्रिकेट ही है।
0: क्रिकेट है। आप फुटबॉल नहीं देखते? क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है।
1: फुटबॉल देखता हूँ मैं, जैसे अभी फिलहाल मैं अपना शायद जितना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ
0: हाँ, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है अभी,
1: फीफा।
0: सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है पूरी दुनिया का,
1: हाँ
0: स्पोर्ट्स इवेंट की जो हिस्ट्री होती है। तो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है, जहाँ तक अगर आपको आइडिया हो? मैं जान सकता हूँ नाम?
1: रोनाल्डो एंड मेसी,
0: रोनाल्डो और मैसी। ये तो
1: मुझे
0: आपने गोट्स के नाम ले लिए।
1: मुझे
0: अच्छा
1: ज्यादा फुटबॉलर्स का नाम पता नहीं है, बस ये दो के ही पता है। हाँ
0: अच्छा आपको पता है रोनाल्डो और मैसी कौन सी टीम से खेलते हैं?
1: एक रोनाल्डो पोर्चुगल से खेलता है, और क्या बोलते हैं अपना मैसी अर्जेंटीना से। हाँ
0: सही बात है, दोनों, एक पोर्चुगल से खेलता है, एक अर्जेंटीना से खेलता है। एंड आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतना चाहिए वर्ल्ड कप?
1: वो तो जैसे मेरा सबसे फेवरेट देखो तो रोनाल्डो ही है, कोशिश यही करूंगा कि मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि रोनाल्डो की टीम जीते, क्योंकि
0: अच्छा।
1: शायद वो आज तक वर्ल्ड कप जीते नहीं है जितना मुझे आइडिया है।
0: जी, अच्छा, इतना ही था आपका?
1: हाँ
0: ये सही बात है, रोनाल्डो आज तक जीते नहीं है। आजकल हर यूथ यही चाहता है कि वर्ल्ड कप वो जीते। और आपने जो आपका कीमती समय हमें दिया आकाश जी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।

तो साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम। क्रम के बारे में हमें ईमेल्स और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न के उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है शुक्र, यानी कि वीनस को। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो इसका उत्तर है सूर्य, यानी कि सन। तो साथियों, अब दीजिए इजाजत आपके रेडियो दोस्त व्रहत को। नमस्कार।

0: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।
2: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
3: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकलकर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग

प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं?
4: आकाशवाणी खंडवा पर।
1: मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
5: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।

0: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ओ मिठी मिठी चाशनी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: दीदी नौकरी लग गई।
8: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ दी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
7: प्रदीप
8: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
8: अच्छा।
9: RBI कहता है,
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से 1-to-1 चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित

0: किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता UCC की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग चार सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण सुझाव लिए। बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और CPM के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक ई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। यह फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि

25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की आईटीआई प्रभात पट्टनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोल बेड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एनएचआरसी दिल्ली द्वारा एनक्यूएएस प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में पीएम जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लंबिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनू में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ईछे निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: कार्यक्रम ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहन होन, अभी मानसून आई गए छे पर कहीं रुकी रहो जो हमारे साथ लुका छिपी करी रहो पर बारिश तो होएगा। तो बारिश का पहला हमको अपना स्वास्थ्य को ध्यान न साथ साथ कुछ सावधानी न भी रखना है ताकि बारिश होए तो हम परेशान नहीं हुआ। इस समय पानी भी नहीं हो रहे तो उबाली का न उपयोग में लेवा। बारिश को मौसम केका नहीं अच्छो लगता है। काई बच्चा न काई बूढ़ा सब पहली बारिश में भीगना कालेन तैयार रहे। अरे पानी आई रोज गीला हुई भी जाएगा। गीला हुई जाओगा घर का बड़ा ये कहज बालक न कह गीला हो जाओगे तो हम ये कहान कि पहलो पानी छे मजो आई रहो। माटी का थोड़ी आए तो भीग का तो वही जावांगा। एका से भीगण को आनंद ज अलग रह। पानी इना बरसात का पानी क जो नयो पानी एका से कहो जाए न बरसात।

को पानी जब शुरू हो तो इना पानी का हम सीधो उपयोग में करने का बजाय उबाली करना हमें को उपयोग करा, क्योंकि ये दिन में जो ये पानी रह एक हम कई तरह का सीधो पानी जो आवन लेकिन नीचे मिट्टी में मिले तो एक हम कई सूक्ष्म कीटाणु हो रह जो बच्चा न का और बड़ा न का पेट पर भी असर करे, यानी डायरिया न उल्टी न होने जैसो का परेशानी हो सके। तो बारिश का दिन जैसो गेस्ट्रो एंट्राइट होने पर या डायरिया नर उल्टी न होने जैसी परेशानी न हो सके। ये वायरस बैक्टीरिया या पेरासाइट्स से हो, ये सब बीमारी का मुख्य कारण छे पानी संक्रमित होना। तो हम हमेशा मतलब उबले हुए पानी को उपयोग करा न। जो छोटा बच्चा छे मतलब 6-8 महीना का बच्चा जेका हम नवाड़ा है तो वो कभी उबाली करना पानी कर उना पानी से नवाड़ा, क्योंकि भाई नहाते समय बच्चा का पानी तो मुड़ा में चली जाए। तो छोटी छोटी सी ऐसी सावधानी न छे जेको हम ध्यान रखांगा तो बच्चा का कोई भी परेशानी या बड़ा न कभी नहीं हो। क्योंकि ये दिन न हम कहीं भी खावाएं तो पछतो नहीं है, एक तो क्योंकि मौसम असो चली रोज मानसून अभी आया नहीं, बारिश हुई नहीं है तो एकदम से गर्मी लगना लगा तो फिर एकदम से ठंडो हो जाए। आज अभी दिन में बारिश हुई गई, थोड़ो पानी आयो, बड़ो आनंद भी आयो क्योंकि मौसम ठंडो हुई गयो न। इना ठंडा मौसम में तो पानी को भी फिर एक आनंद जल लग रहे भाई बहनों। पानी की जो बात करा तो हर समय हम पानी को उबाली का ना रखा और ठंडो होने का बाद को उपयोग करा न। खाना बनाने से पहला हाथ धोवा, फल सब्जी न कभी अच्छी तरह से साफ करा उका बाद जो को उपयोग भी करा। बच्चा कभी हाथ धोए का ना खाना खाने को कहा न। छोटा बच्चा जो जीच जमीन पर चलज घुटना चलज वो बच्चा न का लेन भी बहुत सावधानी न रखना जरूरी है, क्योंकि ये दिन में गिलो चिपचिपापन का कारण बहुत सारा ऐसा सूक्ष्म कण रहे ऐसी सूक्ष्म चीज न रहे जो बच्चा का नाम का नहीं देखाते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी को कारण बनी जाए ओका वो संक्रमण फैलावज। बच्चा का बाजार को जो भी अभी फल आई रही है तो कटेल फटेल फल हो वो खाना का नहीं देवा न। पानी जो छे जैसो शरबत वगैरह पियज बच्चा तो बाहर को खुलो हो नहीं पिए, क्योंकि अभी संक्रमण को समय चल रहा तो मक्खी न की वजह से संक्रमित हो सके। जो पहले जो बच्चा न का गर्मी में दही छाछ मट्ठो ये तो खूब देवा, क्योंकि दही पाचन शक्ति बढ़ावज और संक्रमण से भी बचावज। बड़ा लोग न का डायरिया हो तो वो इलाज कराना पर जल्दी ठीक हो जाए, पर बच्चा का तो अक्सर ठीक होना में वक्त लग जाए। तो इन्हीं बात को विशेष ध्यान रखा तो बच्चा का लेन तो फटाक से हम डॉक्टर के पास जावा। अपना ये मौसम का हिसाब से अपनी दिनचर्या अगर बदली लेवा तो हमका कई चीज की जरूरत नहीं पड़े ना डॉक्टर के ना गोली दवा के। हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सो परिवर्तन करेगा ना बीमारी न का बहुत हद तक हम मुक्तियों का से पाई सका। कसो कि गोली न खानो का बजाय हम जीवन शैली बदला तो जैसो हम का गोली न नुकसान पहुंचावे, जबकि दिनचर्या बदलने से आप एक खूबसूरत जिंदगी का मालिक बनी सकोज। कसो तो 30 से 45 मिनट कोई भी

मारे न का बहुत हद तक हम मुक्तियों का से पाई सका कसो कि गोले न खानो का बजाय हम जीवन शैली बदला तो जसो हम का गोले न नुकसान पहुंचावे, जबकि दिनचर्या बदलने से आप एक खूबसूरत जिंदगी का मालिक बनी सको। कसो तो 30 से 45 मिनट कोई भी हम योग करा, कल सबने योग दिवस मनाया भी, तो हम योग करा, योगा करने से, व्यायाम करने से हमारो शरीर बहुत ही असो मतलब बनेल रह के हम हर काम करने का लेन मानसिक रूप से तैयार रहें, चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती रह हमारा शरीर में। न पानी शरीर में विशेष ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा पानी तो खूब पीवा, न शरीर में जो अगर ये पानी जाए तो ये विषैला पदार्थ रह ओके बाहर निकालने में मदद करे, न शरीर में पानी को स्तर बनाए रखने का साथ साथ त्वचा कभी युवा न चिकनी बनाए रखज। कोई पानी मतलब हमारा शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनो, तापमान का नियंत्रित करें न कभी भी ऐसो हम रस्तों देखाएंगे वो प्यास लगेगा जबज पानी पियांगा, चलते फिरते पानी पिया वहाँ मटका का पास तक नहीं पहुँच पाता है तो बाटल भरी का अपना पास रखे लेवा न पानी पीता रहो, अपन पानी को उपयोग हम करता रहो, गर्मी हो ठंड हो कि बारिश हो। न ये दिन में सबसे महत्वपूर्ण छे कि हम थोड़ो थोड़ो नाश्तो भी करता रहो, ओका से हमको ऊर्जा मिलज, न पेट भरेल रहज तो एकाग्रता न याददाश्त बढ़ेल रहज, न मांसपेशी को तालमेल भी बनेल रहे। भाई बहनों कई चीज न ऐसी रहज कि हम ओको उपयोग कराएं पर हमको मालूम नहीं है कि एक को दुष्परिणाम भी हो सकज, तो हमारा दुनिया भर का कई प्रकार का खाद्य पदार्थ रहे जो कई तरीका से सेवन हम कराएं, न ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ न पेय भी हो जिनको जब मिलेगा ना पीना या खाना से उनको पौष्टिक गुण बढ़ जाए, या ओका विपरीत कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ रहे जिसको सेवन करने से व्यक्ति पर उल्टो प्रभाव भी पड़ने को कारण हो सके, क्योंकि बेमेल भोज्य पदार्थ से जहर को निर्माण हो, यानी अमृत जसो गुणकारी शहद, शहद वह अपन अमृत माना तो शहद न अगर घी को जब अगर हम बराबर की मात्रा में मिलेगा न सेवन करांगा तो ओको हमको उल्टो प्रभाव पड़ेगा हमारा स्वास्थ्य पर, क्योंकि ओको कैश फूड पॉइजनिंग, अगर हम बराबर मात्रा में लेवान शहद न घी तो असो नहीं लेनु चाहिए। फूड पॉइजनिंग का कई कारण है, जैसे कि अभी ये बारिश का दिन छे हमको लगे कि अच्छो छे लेकिन मौसम तो ठंडो छे पर ओका में नमी का कारण चीज खराब हो जाए फफूंद आई जाए, तो पुरानो बासी खानो खराब सड़ी गली सब्जी न फल या खाद्य पदार्थ को ऐसा खाद्य पदार्थ को सेवन करा जैसे दूषित पानी खाने से गंदा हाथ या गंदा बर्तन में खाने से जीवाणु वायरस मक्खी या कीट पतंग द्वारा भोजन का दूषित होनो, न खुला में रखा हुआ भोजन, न डेयरी खाद्य सामग्री जैसा दूध पनीर खोया मावा ये सब को उपयोग करने की तिथि अगर चली गई थे मतलब वो एक्सपायर है, मतलब आज हमको उपयोग करने वो 4 दिन पहले जो कि तिथि खत्म हुई गई तारीख खत्म हुई गई तो हमको उपयोग नहीं करा। कई चीज न सीरेज विषाक्त समुद्री भोजन पौधानक कवक ये सब खतरनाक रसायन से युक्त भोजन जेकर कि कई तरह का बैक्टीरिया द्वारा ये प्रदूषित हुई जाए जो हमारा शरीर में भोजन का जहर का रूप में हमारे शरीर में काम नहीं करता है, और हम कवांज के हमको फूड पॉइजनिंग मतलब उल्टी न हो या फिर दस्त लगी जाए तो ये कोई ना कोई चीज़ से प्रदूषित होने का कारण, ये चीज़ न को हम छोटी छोटी सी चीज़ न को ध्यान रखा कि हम बासी भोजन नहीं करांगा तो हम बहुत अच्छे से अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखी सका, छोटी छोटी ने सावधानी न रखी कर। आओ अब सुने ले मान एक निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज बलिराम आसाराम यदु बंशीना।

भेवेनहोट अभी हम सुनी रहा था यो निमाड़ी लोकगीत जेक गायो थो बलिराम आसाराम यदुवंशी नरु साथी नना। अब आपसे कार्यक्रम संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न पूछी लेवाएं। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि केचुआ खाद बनावण का लेन कौन सी प्रजाति का केचुआ को प्रयोग करो जाए। इना प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर देवांगा। तब तक आप कार्यक्रम सुनो न आनंद लो। भाई बहन होण, किसान भाई होण, कृषि का व्यवसाय करज न छोटा या बड़ा स्तर पर पशुपालन भी करज। पशुपालन का साथ साथ वो आसानी से जैविक खाद को निर्माण कर सकज। एक प्रयोग से मृदा की उर्वरा न जल अवशोषण क्षमता बढ़ज न मृदा अपरदन भी नियंत्रित रज। भाई बहन होण, गाय न भैंस द्वारा उत्सर्जित गोबर न गौमूत्र का पराल का साथ एक गड्ढा में विघटित करी कर जो खाद बनाई जाए ओका गोबर की खाद कज ना इनाज प्रकार से।

0: भेड़ मुर्गी एक ही भी खाद का आसानी से घर में तैयार कर सके। ई खाद ने की गुणवत्ता न मात्रा पशु न का खवाड़े जाने वाला चारा न के गोबर की खाद तैयार करने की विधि पर आधारित रहे। हमेशा ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि खेत में कच्चा गोबर की खाद को प्रयोग नहीं करा। यदि खेत में कच्चा गोबर प्रयोग होगा तो करमुला कीट को प्रकोप रहे और जेका कारण फसल नष्ट हो सके। एक कारण अच्छी तरह से सड़ेल गोबर को उपयोग करा। न भाई बहन होन इनाज प्रकार से खाद का तैयार करने का लेन केचवा खाद को प्रयोग करा। केचवा को खाद की गुणवत्ता तीन चीज पर निर्भर करे। काई काई केचवा की प्रजाति पानी न सड़ी हुई खाद। केचवा खाद बनावना का लेन आइसिनिया फाइटिडा नरु यूडरोलिस यूजिनिया केचवा को प्रयोग करे जाए। ई केचवा खाद को बहुमूल्य कंपोस्ट में बदली दे। साथ ज खाद बनावना का लेन पंचगव्य को उपयोग करा। एक आम कही है कि नौ उत्पाद हो गोबर गौमूत्र दही दूध घी गुड़ केलो नारियल नरु पानी। एक बनावना का लेन गोबर न घी को अच्छी तरह से मिलाया जाए न फिर इना मिश्रण का तीन दिन का लेन रखी दियो जाए न जब लग कि यह मिश्रण पूरी तरह से मिल गयो तो एक फ्री से 15 दिन का लेन मिलाया जाए न फिर एक बात कहीं सामग्री ने ओका में डाले जाए न 30 दिन का लेन मिश्रण का छोड़ दियो जाए। पंचगव्य का खुला स्थान पर मिट्टी का बर्तन या कंक्रीट का टैंक जे को कि मुड़ो चौड़ो हो ओका में रखना चाहिए। पंचगव्य को प्रयोग जैविक कीटनाशी न पौधा का विकास का लेन बहुत ही लाभदायक माने गए। न भाई बहन होन जैविक कीटनाशक से रोग नियंत्रण भी कर सके। कसो कि फसल की किस्म न को चुनाव करते समय रोग न कीट प्रतिरोधी उन्नत किस्म को प्रयोग करा। रोग न कीट न का नियंत्रित करने का लेन समय समय पर खेत में भ्रमण करता रहना चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रित करो जा सके। यह कई भाई बहनों इन्हीं बात को भी ध्यान रखा कि कुछ प्रकार का कुछ कीट रंग की रंग न की तरफ आकर्षित हो कीट होन जो रज न वो कीट न का नियंत्रित करने का लेन रंगीन चिपचिपा ट्रिप को प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि थ्रिप्स का लेन नीला रंग को न एफिट का लेन पीला रंग को ट्रेप प्रयोग में लगना चाहिए। किसान भाई इनका घर पर आसानी से तैयार कर सके। एक लकड़ी या कार्डबोर्ड का गत्ता में पीलो नीलो रंग को पेंट या चार्ट लगाई दे न फिर उसको चिपकाई दे न उना चार्ट न पेंट का ऊपर पेट्रोलियम जेली या वनस्पतिक तेल या चिपचिपा पदार्थ की एक परत लगाई दे न रू इन्हीं ट्रेप को खेत का 1 मीटर का दायरा पर लगे देनु चाहिए। असो करने से कीट ओ की तरफ आकर्षित हुई करना ओक चिपकी करना मरी जाए। हमेशा ध्यान रखा कि ये ट्रेप खेत की सीमा का पास नहीं लगावा। इन्हीं चीज को विशेष ध्यान रखा न ये सब का अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से निर्मित कीटनाशक जैसा कि नीम प्याज मिर्ची लहसुन ये सबको घोल का द्वारा छिड़काव करना चाहिए ना। प्राकृतिक कीटनाशक को प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए न छिड़काव से पहले जैविक मानक को ध्यान अवश्य देवा। ये तो थी आपसे हमारी बातचीत न अब चलान जानकारी की तरफ न जाना फसल में बीज उपचार का महत्व का बारे में जानकारी दे रहा है डॉक्टर आशीष बोबड़े कृषि वैज्ञानिक न इनका से बातचीत करी रहा असीम केथवास।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी सीजन की बात करें चाहे खरीफ सीजन हो रबी हो या जायद हो हम जो भी फसलें लगाते हैं फसलें लगाने के पूर्व जो बीज हम बाजार से खरीदते हैं या स्वयं का बनाया हुआ जो बिल्डर बीज या प्रमाणित बीज जो होता है उसको उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है और हमारे किसान भाई बीजों का उपचार करके ही जो बीज है वे अपने खेतों में बोते हैं और ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाइयों आज की बातचीत में हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की बुआई पूर्व बीजोपचार का महत्व और विधियां इस विषय पर और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष बोबड़े। तो डॉक्टर आशीष बोबड़े जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: आशीष बोबड़े जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजोपचार के महत्व की हम बात कर रहे हैं तो बीजोपचार का महत्व क्या है ये जानना चाहेंगे आपसे।
2: जी हमारे जो किसान भाई जो

0: बुआई करते हैं अपने खेत में, चाहे वो खरीफ सीजन में हो या रबी सीजन में, या जायद की भी बात करते हैं अपन,
1: जी
0: तो उसमें बीजोपचार करके अगर वो लोग बुआई करते हैं, तो बीजोपचार को एक अगर हम कहें तो वो हमारे फसल का टीकाकरण भी कहलाता है।
1: जी
0: जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को बचपन में ही टीके लगवा देते हैं, या अभी की स्थिति में हम देखते हैं कि कोरोना की बीमारी के लिए टीके लगते हैं, उसके बाद हमको बीमारी होने की आशंका कम हो जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो फसल है, फसल में भविष्य में जो आने वाली जो बीमारियां हैं जो हमारे किसान भाई को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं,
1: जी
0: उसकी आमदनी में काफी कमी कर देती हैं, तो इनसे बचने के लिए हम इसको एक प्रकार की टीकाकरण विधि की तरह हम बीजोपचार का हम उपयोग करते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो पूरे कटाई तक वो स्वस्थ रहे और उससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो।
1: जी अब जैसे हम आज की चर्चा में खरीफ फसलों की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी मुख्य खरीफ फसलें हैं जिनमें बीजोपचार की आवश्यकता पड़ती है?
0: जी हमारे यहाँ पे अगर हम हमारे खंडवा जिले की बात करें या निमाड़ की बात करें, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई जो हैं वो सोयाबीन लगाते हैं, फिर उसके बाद मक्का लगाते हैं, मिर्ची है, कपास है।
1: जी
0: तो लगभग मैं तो सभी फसलों के बारे में कहूंगा कि कोई भी फसल हमारे किसान भाई जो हैं वो बिना बीजोपचार के ना बोएं, और जो मुख्य फसलें हैं उनमें तो बिल्कुल बीजोपचार कर ही लेना चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि बीजोपचार करने के बाद क्या है कि जो रिस्क होती है हमारे किसान भाई की वो उसमें काफी कमी आ जाती है, हमारे किसान भाई की फसल जो है अच्छे से अंकुरित होती है और अच्छे से बढ़ती है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है और फसल स्वस्थ रहती है, और स्वस्थ रहने के कारण ही उत्पादन हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलता है।
1: जी अब जैसे आपने यहाँ जिक्र किया है सोयाबीन, ज्वार, मिर्च, तो ये सब अलग अलग वर्ग की फसल है, कुछ दलहनी है, कुछ तिलहनी है, कुछ धान्य फसलें हैं, कुछ उद्यानिकी फसलें हैं, इन सभी फसलों में बीजोपचार की विधि किस प्रकार से होगी?
0: देखिए इसमें क्या रहता है कि जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, या फिर जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं या उद्यानिकी फसलें हैं,
1: जी
0: लगभग इन सब में रोग कारक जो जीवाणु हैं वही आते हैं, चाहे वो दलहनी हो चाहे वो तिलहनी हो, तो बस उनमें क्या रहता है कि वो हर फसल में अलग अलग प्रकार की बीमारियां लेके आते हैं
1: जी,
0: और अलग अलग प्रकार का नुकसान देते हैं, लेकिन जो जीवाणु हैं या रोगाणु हैं वो लगभग वही रहते हैं जो हमारे मिट्टी में या बीज के साथ में आ रहे हैं
1: जी।
0: तो इसलिए बीजोपचार जब हम करते हैं तो बीजोपचार हम फसल के हिसाब से अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं रहता है। स्टैंडर्ड जो तरीका है अगर उससे भी हमारे किसान भाई बीजोपचार करेंगे तो सभी फसलों में उसको बराबर लाभ मिलेगा।
1: अब बीजोपचार हमारे किसान भाई करते हैं तो संसाधन क्या क्या होना चाहिए उनके पास में?
0: देखिए बीजोपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं है, बहुत मूलभूत चीजें होनी चाहिए। पेड़ के नीचे अगर करना चाहते हैं बीजोपचार तो उनके पास में एक त्रिपाल या पॉलिथीन का टुकड़ा होना चाहिए, पक्का फर्श अगर है उनके खेत में जहाँ पे वो एक कमरा बना रहता है सामान भरने के लिए, भंडारण के लिए, तो वहां पे वो कर सकते हैं खलिहान में
1: जी।
0: और उसके अलावा जो दवाई है वो अपने पास हो, बाकी और किसी भी चीज की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती, बहुत कम चीजों में ये हो जाता है
1: जी। कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को बीजोपचार में?
0: जी देखिए बीजोपचार जो है हमारा उसका प्रमुख उद्देश्य हमारा क्या है, इसको देख के हम हमारी जो दवाइयां हैं उसका हम चुनाव करते हैं
1: जी।
0: बीजोपचार जो है वो हम रोग के लिए कर रहे हैं या कीट के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए ही कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसके हिसाब से हम दवाइयों का जो चुनाव करते हैं। जैसे मुख्य तौर पे हम रोग के लिए बीजोपचार करते हैं, जो हमारे यहाँ जो परंपरा में जो अभी है या जो हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो रोग के लिए हम करते हैं, कि जो बीज जनित रोग हैं या मिट्टी जनित रोग हैं वो हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए हम रोगों के लिए बीजोपचार करते हैं
1: जी।
0: तो उसमें हम जो दवाई का उपयोग करते हैं, पूर्व में तो हम कार्बेंडाजिम और थायराम है उसका हम मिक्सचर का यूज करते थे, वो पुरानी बात हो गई
1: जी।
0: अब हमारे मार्केट में जो है वो कई सारे रेडी मिक्स जो है, मतलब पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी, वो मार्केट में अवेलेबल है और काफी इफेक्टिव भी हैं
1: जी।
0: जिसमें से कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का मिक्सचर आ रहा है जिसमें कार्बेंडाजिम 12% है और मैंकोजेब 63% है
1: जी।
0: इसके अलावा कार्बोक्सिन और थायराम का मिक्सचर आ रहा है, तो इस तरीके से हमारे मतलब जो किसान भाई हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से उनमें से कोई भी पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी का चयन कर सकते हैं और उनको काफी इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं
1: जी।
0: और अपनी तरफ से अपने को कुछ भी नाप तोल के मिलाने की आवश्यकता नहीं होती
1: जी।
0: ये जो मैंने दोनों दवाइयां बताई हैं इनका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं और इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं
1: जी। ये तो रासायनिक तरीका हो गया बीजोपचार का, इसके अलावा

0: भी कोई ऐसी विधियां हैं कि हमारे किसान भाई जैविक रूप से बीजोपचार कर सके, ताकि उनको खर्चा भी कम लगे और जो बीजोपचार का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे जैविक तरीके जिससे हमारे किसान भाई बीजोपचार कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो जो हमारा जो एक बहुत भरोसेमंद जो है बीजोपचार करने का तरीका, वो हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: ट्राइकोडर्मा वेडीए, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है। इसकी लगभग हम 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं और उससे हम बीजोपचार करते हैं। इसके रिजल्ट भी हमको काफी अच्छे मिलते हैं।
0: जी
1: उसके बाद स्यूडोमोनास है, उससे हम बीजोपचार करते हैं। और फिर आवश्यकता अनुसार जैसे वर्टिसिलियम से हम बीजोपचार कर सकते हैं, वो कीटों के लिए है।
0: जी
1: तो मतलब अगर हमारे किसान भाई जैविक की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीजोपचार के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं।
0: यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो जैविक उपचार करने वाले जो तत्व हैं, क्या इनकी कुछ एक्सपायरी तिथि वगैरह भी होती है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जैविक जो उपचार हम जो करते हैं उसमें हमको ये मतलब देखना होता है कि वो बहुत ज्यादा दिन के रखे हुए ना हो।
0: जी
1: इसके अलावा उनको जहां पर रखा गया है भंडारण करके, तो वो जो है वहां पे उनको बहुत ज्यादा गर्म या धूप वाली जगह पे ना रखा गया हो, क्योंकि वो भी एक प्रकार से सूक्ष्म जीव है।
0: जी
1: जैसा अपने को अगर हम विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं या ज्यादा गर्मी में रहेंगे तो हमको पसीना आएगा, ठंड में रहेंगे तो हमको ठंडी लगेगी, तो वैसे ही ये जो कोई भी जीव जो रहता है उसको भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं। अगर अनुकूल परिस्थितियां उसको नहीं मिलेंगी तो उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी जो हमारे जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल ही बेअसर हो जाती हैं।
0: जी
1: तो इनका एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट हमारे किसान भाई देख के खरीदें, साथ में ये भी देख लें कि उसकी निर्माण तिथि क्या है, कब बनाया गया है, जितना ताजा बना हुआ मिले उतना अच्छा है।
0: जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और हमारे किसान भाइयों को जरूरी भी है, क्योंकि किसान भाई बहुत मेहनत से और अपनी जो फसल वो लगाते हैं काफी पैसा खर्च करते हैं उसमें, और उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
1: जी
0: अब इसकी विधि क्या है,
1: जी
0: कैसे करें हमारे किसान भाई?
1: विधि किसान भाइयों को थोड़ा विस्तृत रूप से समझा देता हूँ ताकि उनसे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो।
0: जी
1: तो हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हम बीजोपचार हम करते हैं फफूंदनाशी से,
0: जी
1: तो हमको जो फफूंदनाशी है वो हमको लेना है, जो मैंने बताया मार्केट में रेडीमिक्स जो मिल रहे हैं, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, कार्बोक्सिन और जो थायराम है,
0: जी
1: तो इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशी हमको लेना है और इसका हमको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपयोग करना है।
0: जी
1: अब 3 ग्राम प्रति किलो बीज, अगर उदाहरण ले हम 1 क्विंटल के लिए हमको 300 ग्राम दवाई लगेगी, लेकिन करना कैसे हमको, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अपने को जो बीज है हमारा उसका ढेर हमको या तो पक्के फर्श पे बनाना है, या फिर अगर कच्ची जमीन है तो पॉलिथीन बिछा के या त्रिपाल बिछाकर हमको बीज का ढेर लगा लेना है। अब हमने जो दवाई की जो पूर्व निर्धारित बीज की मात्रा के हिसाब से दवाई की मात्रा हम ली, हम उस दवाई को क्या करेंगे, थोड़े से पानी में पहले हम शक्कर या गुड़ घोल लेंगे ताकि हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा चिकटा टाइप का बन जाए, और इस पानी से हम जो हमारी दवाई की मात्रा है उसको हम भिगा लेंगे और इतना ही भिगाएंगे जितना गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए,
0: जी
1: और इस पेस्ट को हम हमारे जो बीज के ढेर के ऊपर डाल के और उसको हाथों में पॉलिथीन पहन के या रबर के दस्ताने पहन के धीरे धीरे धीरे धीरे हम उसको मिलाते हैं,
0: जी
1: जब तक कि एक एक बीज के ऊपर उस दवाई का जो नीला हरा रंग जो है, जनरली इसके ये दवाई जो है नीले हरे रंग की होती है, तो हमारे प्रत्येक बीज के ऊपर नीला हरा रंग हमको ना दिखने लगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक बीज दवाई से अच्छे से लग जाए,
0: जी
1: और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको छायादार स्थान पे 15 से 20 मिनट तक हम इसको बीज को सुखाते हैं। जब हमें ये कंफर्म हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि हमारा बीज सूख चुका है, तो हम बीजोपचार की अगली प्रक्रिया चालू करते हैं, उसी बीज को हम कीटनाशक से करते हैं
0: जी
1: बीजोपचारित। तो कीटनाशक में अगर हमें रस चूसक कीटों के लिए करना है तो हम थायोमिथाक्जाम या इमिडाक्लोप्रिड है उसका उपयोग करते हैं, अगर हमको उदी के लिए दीमक के लिए अगर हमको बीजोपचार करना है तो हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करते हैं।
0: जी
1: तो इनकी जो मात्रा है वो सबकी अलग अलग मात्राएं हैं, उनकी मात्रा के हिसाब से हम ले लेते हैं। जैसे हम थायोमिथाक्जाम की एक बात करें तो 30 FS की हम लगभग 10 ml मात्रा हम प्रति किलो बीज लेते हैं। अगर हम इमिडाक्लोप्रिड 70 FS की बात करें तो हम इसकी मात्रा लगभग 7 ग्राम प्रति किलो बीज लेते हैं,
0: जी
1: और अगर क्लोरोपाइरीफॉस की बात करें हम 20%, तो वो हम इसकी लगभग 10 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। तो ये जो दवाइयों की मात्रा हम लेके और बीज के हिसाब से हम लेके

0: और इसको हम उसी जो बीज को जिसको हमने फफूंदनाशी से बीजोपचारित कर लिया था उसका वापस से ढेर बना के उस पे हम ये दवाई कोई भी आवश्यकता अनुसार एक दवाई का उपयोग हम करते हैं। और उसके बाद वापस से वही प्रक्रिया की पूरी जो दवाई है हमारी प्रत्येक बीज तक लगने तक हम उसको फिर से मिलाते हैं और उसके बाद वापस फिर 15-20 मिनट हम इसको छायादार स्थान पे सुखाते हैं।
1: जी
0: तो अब जो हमारा बीज है वो फफूंदनाशी से भी बीजोपचारित हो गया, उसके बाद कीटनाशी से भी बीजोपचारित हो गया। इसके बाद में हमारे किसान भाई अगर चाहें तो फिर तरल जैव उर्वरक से 10 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर सकते हैं। असल में हम जो तरल जैव उर्वरक का प्रयोग हम सबसे बाद में इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत में फफूंदनाशी से जो भी है हमारे जो सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में जो कीटनाशी से हमारे जो कीटों के अगर कुछ अंडे हैं या जो भी है वो सारी चीजें वो हमारे बीज से हट जाती है और बाद में फिर हम जो है तरल जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसके रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिलते हैं।
1: जी
0: तो इस प्रक्रिया से करने के बाद में फिर हम इस बीज को अपने खेत में बोने के लिए ले जाते हैं। सिर्फ इसमें हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम तीनों चीजों से बीजोपचार कर रहे हैं तो इनके बीच में हमको बीज को सूखने देना है 15-15, 20-20 मिनट और उसके बाद में हमको जब सूख जाए बीज तभी हमें अपने खेत में लेके जाना है। और जिस दिन हम बीजोपचार कर लेते हैं उसी दिन हमको बो देना है। हम इसको बीजोपचारित करके ज्यादा समय या कुछ दिनों के लिए ना रखें,
1: जी
0: तत्काल इसकी बुआई कर दें, अपने को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे।
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने कि हमारे किसान भाई जिस दिन बीजोपचार करें उसी दिन बोनी यदि वे कर देते हैं तो उन्हें उत्पादन अच्छा मिलेगा और जिस उद्देश्य से बीजोपचार किया गया है वो पूरा होगा। डॉक्टर आशीष बोबड़े जी, बीजोपचार के लाभ क्या है ये बताइए।
0: देखिए बीजोपचार मैंने जैसा अभी पूर्व में बताया था कि हमारे कुछ विभिन्न उद्देश्य होते हैं जिसके लिए हम बीजोपचार करते हैं। पहला उद्देश्य हमारा होता है कि बीमारियों से हमारी फसल की सुरक्षा करना,
1: जी
0: उसके अलावा कीटों से हमारी फसल को सुरक्षा करना, और इनके अलावा हम कभी कभी बीजोपचार हम जो हमारे कल्चर होते हैं जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं उनसे भी हम बीजोपचार करते हैं।
1: जी
0: तो इसमें मैं क्रम बता देता हूँ
1: जी
0: आपको।
1: जी
0: बीजोपचार का एक निश्चित क्रम होता है। जनरली हम लोग जो बीजोपचार करते हैं तो हम केवल एक दवाई से रोगों के लिए करते हैं, लेकिन जहां हमको रोगों के लिए, कीटों के लिए और जैव उर्वरकों के लिए बीजोपचार करना होता है तो उसको एक निश्चित क्रम में किया जाता है जिसको हम FIR के नाम से जानते हैं। तो ये FIR जो है हमारे किसान भाई याद रखेंगे तो सबसे पहले F का मतलब होता है फंजीसाइड, फंजीसाइड का मतलब होता है फफूंदनाशी।
1: जी
0: तो फफूंदनाशी से हम जब बीजोपचार करते हैं तो वो बीजोपचार हमारा जो है हमारी फसल को बीमारियों से बचाता है।
1: जी
0: उसके बाद आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक। तो जब
1: जी
0: हम कीटनाशक से बीजोपचार करते हैं तो वही फसल को हमारा कीटनाशक है वो कीटों से बचाता है।
1: जी
0: और साथ में जब ये दोनों का हो गया, मतलब बीमारी और कीट का जो उपचार हो गया, लेकिन हमारी फसल को जो जमीन में जो पड़े पोषक तत्व हैं और जो आवश्यक तत्व हैं उनको आसानी से उपयोग हमारी फसल कर ले उसके लिए हम तरल जैविक उर्वरक से हम मतलब बीजोपचार करते हैं। तो वो 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उससे बीजोपचार करते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो वो है कमी वो भी हमारी फसल की पूरी होती है क्योंकि वो जो जीवाणु हैं उसके जमीन से लेके उस तत्वों की कमी पूरी करते हैं हमारी फसल में और फसल की वृद्धि अच्छी होती है।
1: जी
0: तो कीटों से मुक्ति हुई हमारी फसल की, साथ में बीमारी से मुक्ति हुई, उसके अलावा फसल को पोषण भी अच्छे से मिलता है। तो
1: जी
0: बीजोपचार के ये मतलब बहुआयामी फायदे में है ये बात।
1: बहुत अच्छी बात कही हमने और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं जो खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे हैं और फसलें लगाने वाले हैं, बस बारिश का इंतजार है। बारिश जैसे ही होती है हमारे किसान भाई अब बोनी का जो कार्य है वो शुरू कर देंगे। तो उसके पहले बीजोपचार की जो प्रक्रिया है जैसा आपने बताया तो वो जरूर करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो डॉक्टर आशीष बोबड़े जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को खरीफ फसलों की बुआई पूर्व बीजोपचार का महत्व और विधियों के बारे में इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भाई बहन। अभी आप सुनी रहा था ये भेंट वार्ता, जानकारी दे रहा था डॉक्टर आशीष बोबड़े ने, इनका से बातचीत कर रहा था असीम केतवास। अब आपको बता देवा आज का कृषि समाचार। जिला में मानसून अभी तक सक्रिय नहीं होने से तापमान भी बढ़ी रहो है। न मानसून 8 तारीख से महाराष्ट्र में अटकेल छे। अलनीनो को बहुत अधिक असर छे। 27 तारीख का बाद मौसम में थोड़ी हलचल होएगा, ना 3 दिन बाद फिर कम हो जाएगा। ये पानी नहीं गिरे तो मानसून जुलाई का दूसरा सप्ताह में आने की संभावना छे। ने किसान भाई ना का पास

बौनी का लैंड समय छे, अभी बौनी का लैंड जल्दबाजी नहीं करा। जमीन में 9 इंच तक की गहराई तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंची जाए जब तक खेत में बीज बिल्कुल नहीं डालना। न जिना किसान भाई ना का पास पर्याप्त पानी भरपूर व्यवस्था छे तो वो पलेवो देकर ना बतरावना पर भूमि उपचार करेगा ना बुवाई करा, क्योंकि उमस अधिक हो रही जमीन में कीड़ा बीमारी बढ़ी जाई सकज। तो क्लोरोपाइरीपास ना ट्राइकोडर्मा वेडी से उपचारित करेकज बोनी करा, नहीं तो बीज में सड़न लगी सकज। ई था आज का कृषि समाचार। न अब आपका जानकारी दे देवान कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव की। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 4000 से अधिकतम 6981 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2298 रुपया से अधिकतम 2568 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5000 से 5950 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 2000 से 2110 रुपया प्रति क्विंटल। न तुअर को न्यूनतम भाव रहो 5500 से अधिकतम 7101 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो थी खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव की जानकारी। नामो मौसम की जानकारी देवाए तो आज सूर्योदय हुयो प्रातः 5:41 पर, न सूर्यास्त हुयो शाम 7:09 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो ये तो थी मौसम की जानकारी। न अब कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो थो। प्रश्न थो कि केचुआ खाद बनावने का लेन कौन सी प्रजाति को प्रयोग करो जाए। तो इना प्रश्न को उत्तर छे कि केचुआ खाद बनावने का लेन आइसिनिया फाइटिडा नारू यूडरोलिस यूजिनिया केचुआ को प्रयोग करो जाए। ये दुई प्रजाति ना छे जेका प्रयोग करने से खाद अच्छी बने। अब इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का। राम राम।

हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत।

0: अब कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार? सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको, या सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े है तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर है कि कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ, तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस

0: आराम कुर्सी पर बैठकर ये नावल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
1: धोखा?
0: हाँ, भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ, घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और 2 कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना
1: अच्छा, मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए। तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक
0: अरे
1: उसे?
0: भगवान, क्यों चिंता करती हो? नौकरी आजकल मिलती नहीं, और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
1: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
0: ओह, गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी, आज बड़ा मजा आया शहर।
0: हाँ, मुझे भी।
2: मौसम बहुत अच्छा था।
0: हाँ, यहाँ भी।
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
0: हाँ, हाँ। किसके साथ?
2: किसके साथ? हाँ। जी वो मेरा मतलब है।
0: हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
2: जी,
0: ना।
2: वो
0: हाँ,
2: डैडी।
0: कौन है वो?
2: डैडी, बहुत अच्छी लड़की है।
0: ओह।
2: एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है। अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है, इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती। और माँ धार्मिक विचारों की है।
1: अच्छा।
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
1: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
1: स्त्री सुबोधनी?
0: शाबाश बेटा, शाबाश। मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा?
2: मगर डैडी, हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
0: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेढप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं। रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर?
1: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
2: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
0: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ, वो 1 कप चाय।
1: हे भगवान।
2: डैडी, मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी। वो
0: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
2: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या अभी 15 मिनट में? मगर मगर मगर शोभा सुनो तो, है बंद कर दिया। मम्मी डैडी,
0: क्या हुआ?
2: शोभा, शोभा डैडी।
1: अरे शोभा, क्या हुआ शोभा को?
2: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
1: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख लूं।
2: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
2: सारा घर कबाड़खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
0: मगर वो चाल
2: डैडी, ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं? तेजी से उठिए ना प्लीज, भाग कर जाइए और शेव कीजिए।
0: अच्छा,
2: जी हाँ,
0: अच्छा,
2: शेव कीजिए और कपड़े पहनिए।
0: हाँ, हाँ।
2: क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
0: अरे तो
2: मगर मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
0: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी दे।
2: बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ, रसोई संवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
1: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती
2: हूँ। ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी, ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए।
3: हाँ हाँ।
2: और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ, ये अखबार है। हाँ, ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के टुकड़े। हमारा घर है या किताबें? वाह वाह, सब किताबें भी यही है। चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है।

0: वाह वाह डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
1: हाँ बेटी।
0: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, ये हुई ना बात।
1: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसे लग रहे हो। चलो चलो चलो चलो चलो, चलो।
0: मम्मी मैं भी तैयार हो लूं।
1: चलो।
0: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। लीजिए, अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल। वो हो, हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या ला ला ला। ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
2: हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है।
0: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी। हाँ बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे जंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ आओ, यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी आप इनके साथ, बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ कितनी सुंदर जोड़ी है।
2: मगर बेटा
0: बस डैडी, बस बस बस बस बस बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
2: ऐसे।
0: और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
1: ला मुझे दो।
0: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
1: ठीक है।
0: हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
1: बिल्कुल पतला है ये तो।
0: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो?
3: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
0: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
3: हाँ सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
0: मगर मगर सुनो तो शोभा, शोभा गई डैडी, वो किताब देकर चली गई।
2: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
0: मगर मगर वो
2: डैडी, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना, और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
4: रमेश के मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
0: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
2: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
1: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
2: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
0: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
1: अच्छा बेटा।
2: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहाँ है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, ऐशरे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए, और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की, और अब मैं इस सोफे पर टांगे पसार कर नावल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
1: ये लीजिए चाय।
2: लवेला, ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
1: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
2: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
0: अच्छा डैडी। शोभा
3: है, इतना घबरा क्यों गए?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
3: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
0: एतराज नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर मगर तुम तो
3: भाई। मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
0: सॉरी।
3: नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी।
0: नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
3: अरे ये बात क्या है,

0: इतने घबराए हुए क्यों हैं?
1: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
0: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
2: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
0: धन्यवाद। कितना आराम है यहाँ, कितना सुख।
1: जी
0: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
1: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
0: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर ना हो, कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना, कहीं बैठने लगो तो यहाँ ना बैठना बेटा अभी ठीक किया है, कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं, अंदर जाने लगो तो अरे रर रर रर, इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
1: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
0: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की केरेस खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे, घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
3: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुने अगला गीत अभिजीत सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में। नगमा निगार हैं सईद कादरी, म्यूजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया, कौन लाया?
3: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

0: और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
2: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
6: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में

0: विकसित किया जाएगा। काशफिर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं

0: प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहां से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थीं।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अल्लेना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर यह नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्लेना, सिर्फ एक तू है लाखों में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजाही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही बड़े शा

कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुल।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर